0: से मैं सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ।
1: मेरे कानों में गूंजती है जो मीठी मिठी,
0: वो कौन है जिसकी राहों को तकती है नजर, वो कौन है जिसने किया है मुझको खुद से बेखबर, वो कौन है जो मेरे पल पल में शामिल है, वो कौन है जो मेरी मंजिल है, वो कौन है जिसे मैं सुनना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ।
1: मेरे कान

जाना कभी, ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी। वो ख्वाब है या हकीकत है,

यू नो व्हाट, हम सुबह उठते ही ना हमारी ब्रेन की ना एक स्ट्रेंज हैबिट हो गई है. वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम, अस्सलाम वालेकुम. मैं हूं सिंपली आफरीन, राइटर ऑन दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग. एंड सुबह उठते ही हम में से ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इतनी जल्दी इतने एक्शन मूड में आ जाते हैं, आंखें प्रॉपरली खुली भी नहीं होती है, लेकिन दिमाग पूरे दिन की ना टू डू लिस्ट ऑलरेडी बना चुका होता है. ऑफिस का काम करना है, घर का काम करना है, कॉल्स करने हैं, मैसेजेस का रिप्लाई करना है, ये पेंडिंग है, वो कंप्लीट करना है. और आई थिंक सो सुबह के एक घंटे में ही ऐसा लगता है कि यार ओवरवेल्म्ड, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा काम करना है. बट यू नो व्हाट, वी कैन ट्राई समथिंग डिफरेंटली टुडे. डोंट कैरी द होल डे इन योर हेड एट वंस, है ना. अभी सुबह है तो सुबह का सुबह में हैंडल कर लेंगे, दोपहर का दोपहर में देख लेंगे प्रॉब्लम क्या है, एंड इवनिंग का स्ट्रेस अभी से एडवांस बुकिंग में क्या करने की जरूरत है, राइट. वन थिंग एट अ टाइम, वन कॉन्वर्सेशन एट अ टाइम, एंड वन गुड सॉन्ग एट अ टाइम, है ना. सो लेट्स गो टू दैट गुड सॉन्ग. और बस यार ऐसे ही करके हमारा जो नॉर्मल सा दिन है एकदम सुकून से पीसफुली हम निकाल देंगे. एंड दैट्स ऑल्सो कॉल्ड अ प्रीटी गुड डे. वेरी गुड मॉर्निंग, आप ट्रेन जुड़ गई हैं आपके साथ टू मेक योर मॉर्निंग्स इवन मोर स्मूथ एंड मस्त. राइटर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिर्ची पर इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस.
1: हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर समीन समीद. आई एम साइकियाट्रिस्ट एट नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर. आई एम हियर टू टॉक अबाउट टेकिंग केयर ऑफ आवर मेंटल हेल्थ. चेक इन टुडे, यू कैन चेक इन ऑन समवन यू केयर अबाउट. अ सिंपल हाउ आर यू रियली डूइंग कैन मीन अ लॉट. यू डोंट नीड टू हैव ऑल द आंसर्स. समटाइम्स लिसनिंग विदाउट जजमेंट एंड सिंपली बीइंग देयर is absolutely enough. And finally, always seek help when in need.
2: Take care of your mind. It matters.
3: Mirchi.
4: Iska bana, uska bana, saka bana.
3: Rabana.
4: Murga, murga. Nafis bala murga.
3: Mirchi murga.
5: Hello.
6: Could I speak to Manish, please?
5: Speaking.
6: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से. ओके मनीष, आई नीड योर फेवर. आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी. मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को. मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, कि पहले इंसान एप था. आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में. हाँ, पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया. राइट,
5: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
6: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे. इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके.
5: करना क्या है, अभी भी नहीं समझ पा रहा.
6: तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था. तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे. तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स के सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर. आई एम श्योर के सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था. बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी. तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए. कल का रख ले. मेरी बात मेरी बात सुनो. आई एम प्रोफेसर. आई एम प्रोफेसर. मेरी बात सुनिए यार. आप हेलो. वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है.
5: हेलो,
6: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी. मेरी बात सुनिए. मेरी बात सुनिए. मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने. उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार. मैं मुर्गा बनाया, तुम रेडियो मिर्ची पे हो. आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार. मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार. इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया. मैं बता दूंगा उनको.
7: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
8: हाय, दिस इज अनुराधा पौडवाल.
9: कोई ना कोई चाहिए प्यार करने वाला.
10: दिस इज विनोद राठौड़ एंड वी आर कमिंग टू परफॉर्म इन योर सिटी दोहा कतार.
9: भूल से पर्दा कीजिए.
11: हाय, आई एम अजीवर रहमान. वी आर कमिंग टू परफॉर्म इन योर सिटी दोहा कतार.
12: एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ देयर वॉइस ऑन 30th October 2026 एट Aspire Zone Ladies Sports Hall, Doha, Qatar, 6:30 PM onwards. In association with Indomie Noodles, Lulu Hypermarket, iPay and Green Printers, online ticketing partners, QTickets.com, Platinum List, Virgin Megastore and S-City. For more information, contact 6004369. An event by Rami Productions International.
13: Our business is our business, none of your business.
14: पर दीदी, आर एंटरटेनमेंट इज योर एंटरटेनमेंट.
15: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन.
16: 89.6 FM, मिर्ची 1. इट्स हॉट.

देखिए हमारे कतर में वेदर जैसे जैसे ना बेटर होने लगता है, एक चीज का एक्साइटमेंट ना अपने आप शुरू हो जाता है। और वो है हमारे आउटडोर प्लान्स का। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। अच्छा, आप वो कैटेगरी में आते हो जो कैंपिंग बहुत एंजॉय करते हैं, डेजर्ट, टेंट्स, बारबेक्यू, लेट नाइट चाय, बेसिकली कतर विंटर्स का अपना ही एक मूड होता है, वो आप खुद बना लेते हो। तो बस इस बार आप सीजनल कैंप लगाने का प्लान कर रहे हैं तो डेट्स नोट कर लीजिए, बिकॉज रजिस्ट्रेशन जो है 11th अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है और एक्चुअल विंटर कैंपिंग सीजन जो है वो 25th अक्टूबर से लेकर 20th अप्रैल तक रहेगा। वेल, रजिस्ट्रेशन एक साथ सबके लिए नहीं खुलेगा। सेंट्रल एरियाज 11th से 13th अक्टूबर है, सदर्न एरियाज जो है 14 से 16 अक्टूबर है और नॉर्दर्न एरियाज जो है 17 से 21 अक्टूबर है। और अगर पहले राउंड में मिस हो गया तो 22nd से 31 अक्टूबर तक रिमेनिंग अवेलेबिलिटी के लिए ऑल एरियाज रीओपन होंगे। वेल, रजिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री के वेबसाइट या BEAH से होगा और उसके लिए आपका नेशनल ऑथेंटिकेशन सिस्टम अकाउंट एक्टिव और डिटेल्स अपडेटेड होनी चाहिए। वेल, एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर है कि बुकिंग के वक्त परमिट फी के साथ 10,000 का त्रिरियाल सिक्योरिटी डिपॉजिट एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग दोज कैटेगरीज विच मे बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम परमिट फीस। और रिफंड को ईजी रखने के लिए अथॉरिटीज रिकमेंड कर रही है कि कैंप ओनर का ही बैंक कार्ड पेमेंट के लिए यूज कीजिए। सो वेल, ये उनके लिए है जो प्रॉपर टेंट के साथ में जो कैंप सेटअप करते हैं, जहां पर किचन भी होता है, सेपरेट कैंप साइट भी होता है, और ये खास उनके लिए ये रजिस्ट्रेशन है। सो इफ यू बिलोंग टू दैट, या फिर आप उन शौकीन लोगों में से हैं जो आप हर साल कैंप सेटअप करते हैं, देन दिस वन इज फॉर यू। 11th अक्टूबर इज अ डेट जहां पर रजिस्ट्रेशन खुलने वाली है। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइट ऑन दिस ब्यूटिफुल मॉर्निंग ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखिए, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं ना, तो अगले 40 सेकंड जरा ध्यान से सुनिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड कतर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने कुछ कॉमन ड्राइविंग मिस्टेक्स को लेकर मोटरिस्ट को एक रिमाइंडर दिया है। देखिए, इंटरेस्टिंगली ये कोई ऐसी मिस्टेक्स नहीं है जो हमने कभी देखी ही नहीं है, सामने वाले को करते हुए भी देखा है। एंड ऑनेस्टली कभी ना कभी हमसे खुद भी हो जाती है। सो वेल, MOI ने हाईलाइट किया है कि अनसेफ या सडन लेन चेंजेस या फिर ड्राइव करते वक्त फोकस लूज करना, सामने वाली गाड़ी से सेफ डिस्टेंस मेंटेन ना करना और किसी रोड पर एंटर या टर्न करते वक्त पहले प्रॉपरली चेक करना कि यार रोड क्लियर है या नहीं। और देखिए, ये लास्ट वाला तो ना मेरे साथ हो चुका है, यानी मैं इसके शिकार रह चुकी हूँ रिसेंटली लास्ट मंथ ही, कि यार कोई ऐसे सडनली एंटर कर गया था लेन में सामने मेरे एंड देन हो गया छोटा सा एक्सीडेंट। वेल, ये सारे रीजन जो है एक्सीडेंट का रीजन जरूर बन सकते हैं। अब ये सारी बातें आप कहोगे हमें पता है, फिर आफरीन रिपीट क्यों कर रही है? बिकॉज अगर आप राइट नाउ ड्राइव कर रहे हैं और आफरीन अगर ये बोल रही है, तो चांसेस है कि अगला लेन चेंज करते वक्त एक बार एक्स्ट्रा मिरर चेक करेंगे आप।

गाड़ी के बीच थोड़ा और डिस्टेंस रखेंगे आप, फोकस जो है ऑटोमेटिकली आपका रोड पर आ जाएगा। एंड बस इतना सा रिमाइंडर, अगर एक सडन ब्रेक, एक छोटा सा बम्प या एक एक्सीडेंट भी अवॉइड करा दे तो फिर हो गया ना मेरे रिमाइंडर का काम, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली MOI के रिमाइंडर का काम। सो वेल, चलिए अब आईज ऑन द रोड बैक अगेन एंड इयर्स ऑन द अगला गाना। माइक से दिल तक आप चीन है आपके साथ।

0: song is driven by Unipart, your one-step destination for quality auto parts, trusted brands and unbeatable value. Unipart, a part of your life.
1: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही. मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून. मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स.
2: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज. द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स. ऑर्डर नाउ.
1: Powered by iPay Wallet.
0: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ. No stress, self trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do that iPay.
4: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
0: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
5: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
6: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
7: Baladna.
6: Taste that Qatar loves.
4: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
8: कट
9: अबे कौन है?
8: उत्तपा.
9: उत्तपा कौन?
8: उत्तपा में दो डोसा और सांभर ऑर्डर किया था, आया क्या?
9: खटखट. Who that?
10: Only on 89.6 Mirchi 1.
11: Mirchi

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल, वीकेंड आ गया है और आफरीन आपको एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखते हैं भाई ओटीटी पर क्या जलवा चल रहा है।
2: अरे भाभी जी, एकदम लेटेस्ट डिजाइन है,
3: फ्रेश है भैया, फ्रेश है, एकदम नया आया है।
4: अरे मार्केट में नया क्या है?
1: वेल, मार्केट में नया नेटफ्लिक्स के परिणीति चोपड़ा की एक अपकमिंग मूवी आई है। वेल, देख रही हूँ आजकल परिणीति चोपड़ा ओटीटी फोरम में बहुत ज्यादा नजर आ रही है। वेल, इसका जो नाम है, इसका नाम है रिपोर्टिंग लाइव एंड दिस इज अगेन अ क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर। इससे पहले भी जो इनकी मूवी आई थी शक, वो भी एक थ्रिलर मूवी जैसी ही थी, सस्पेंस था उस पर काफी। वेल, अगर इसकी बात करें तो इसमें परिणीति चोपड़ा जो है संध्या का किरदार निभाती है, एम्बिशियस यंग जर्नलिस्ट है, एंड इनके साथ जो है देवेन भुजानी। वेल, आई एम मोर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी देवेन भुजानी। वेटरन एक्टर है भाई, ये कॉमेडी भी करते हैं एंड बहुत मजे के एक्टर है। फिलहाल उनको हमने चुंबक में भी देखा था, सो वो वहां पर भी बहुत मस्त उन्होंने एक्टिंग की थी। उसके बाद बात करते हैं इमरान हाशमी की मूवी आवारापन 2, ये जो है अमेजोन प्राइम पर ये भी आ गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इश्का इश्का ये एक सीरीज है विच इज ऑफ ऑल न्यू कैरेक्टर्स है इसमें। उसके बाद अगर बात करें तो पूजा मेरी जान, ये जो है ये Z5 में क्राइम थ्रिलर अगेन जो आ गई है, और इसमें आपको मृणाल ठाकुर नजर आएंगी, हुमा कुरेशी नजर आएंगे, विजय राज भी है। सो यस, द स्टारकास्ट लुक्स क्वाइट इंप्रेसिव। और थोड़ा सा कॉमेडी के बात करते हैं, माई फेवरेट जॉनर ऑफ एंटरटेनमेंट आई वुड से इज कॉमेडी, दो पहिया सीजन 2। दो पहिया सीजन 1 आपने देखा था? अरे इसका जो स्टारकास्ट है ना, बहुत ही गजब है। गजराज राव है, रेणुका शाणे हैं, स्पर्श श्रीवास्तव जो लापता लेडीज में था, यस वही है इसमें, एंड सो मेनी मोर। सो आई थिंक सो इसका जो सीजन 2 ये भी मजेदार होगा, बहुत ही फनी होगा, ये भी आप देख सकते हैं। वेल, अमेजॉन प्राइम पर ये भी आ चुका है। सो काफी सारे ऑप्शंस आफरीन लेकर आती है, सो यू जस्ट हैव टू पिक फ्रॉम दिस और अपना वीकेंड एंजॉय कीजिएगा। राइट हियर आफरीन है आपके साथ, माइक से दिल तक ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: तुषार कपूर आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल। कितना मजा आया टू माउथ दोज लाइंस?
3: I don't have to mouth those lines.
4: Sorry, bro. Sorry.
3: तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? नहीं, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ साजिद फरहाद। इनकी नरेशन, मतलब दे जस्ट ट्रांसलेट रोहित विजन सो वेल इन दिस जोन, इन दिस जॉनर, एंड आई विश आई गेट टू डू अ फिल्म समडे वेयर आई हैव टू माउथ देयर लाइंस।
2: तुषार कपूर, इनफैक्ट वी विश कि आपको कभी भी गोलमाल के किसी भी फ्रेंचाइज में लाइंस ना मिले, सिर्फ ए ई आई ओ यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मैं बंधुओं, जानते हो एयरपोर्ट पर दो तरह के लोग होते हैं। एक जो बोर्डिंग गेट ढूंढते हैं और दूसरे जो बोर्डिंग गेट से पहले ड्यूटी फ्री ढूंढते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और अगर देखो आप ना सेकंड कैटेगरी में आते हो, देन दिस न्यूज इज डेफिनेटली फॉर यू।
1: क्या खबर कतर?
0: खबर ऐसी है दैट कतर ड्यूटी फ्री ने 2026 फ्रंटियर अवार्ड्स में एयरपोर्ट रिटेलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, और एक बार नहीं फोर्थ कॉन्सिक्यूटिव ईयर है कतर ड्यूटी फ्री ने ये टाइटल अपने नाम किया है। साथ ही एक और अवार्ड मिला है, बेस्ट स्पेशलिटी कॉन्सेप्ट हाइब्रिड एंड FMB रिसेंटली ओपन्ड लैंडकॉम कैफे दे ला रोज के लिए भी। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बिकॉज ये ब्यूटी एक्सपीरियंस और कैफे को एक ही स्पेस में कंबाइन करता है, एंड रिपोर्टेडली ये दुनिया का फर्स्ट एयरपोर्ट ब्यूटी कैफे है। हाउ इंटरेस्टिंग, वाओ। और पिछले 12 महीने में HIA पर कतर ड्यूटी फ्री ने 15 नए रिटेल कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट का फर्स्ट POP मार्ट, दैट इज द पॉप मार्ट। तो अगली बार हमद इंटरनेशनल से फ्लाइट हो और कोई कहे 3 घंटे पहले एयरपोर्ट क्यों जाना है, तो अब आपको इसकी वजह तो मिल गई है। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको। आपका अकाउंट नंबर 337103 राइट?
2: हाँ।
3: वन सेकेंड सर। सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000।
2: हाँ।
3: वन सेकेंड सर, आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
2: नहीं तो।
3: आपने नहीं किया है?
2: नहीं।
3: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
2: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
3: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम। मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है। आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाला, किसने निकाला, किस पे शक है आपको?
2: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना कुछ को चेक दिया है, ना मैंने एटीएम यूज किया है।
3: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
2: मैंने 2 पैसे निकाले।
3: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
2: मैंने कोई पैसा नहीं निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल? ओके
3: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं, लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको। मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
2: मुझे नोट लेके जा रहा है, उस पर मेरा नाम लिखा है।
3: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल लिए हैं। मुझे नहीं पता आप
2: ठीक बोल रहे हो, वहीं आके बजाऊंगा।
3: आप मुझे क्या बताएं? आप बदतमीजी से बात मत करिए।
2: लगा दूंगा लाइन में
3: सर, मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए। बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी, स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं। सर ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे। 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है।
2: क्या
3: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
2: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
4: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, बात आपसे ही करनी थी। और बैंक हमारा मिर्ची का है, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है। 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं आपके अकाउंट में, 1,42,000 रुपए हैं। और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था।
3: लेकिन सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है। नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: Looking to grow your business, expand your network and reach the right customers? Introducing the Qatar Business Card Directory, QBCD, the flagship product of Media Plus WLL Doha, now proudly launching its 20th edition. Be part of this major milestone. Enroll your business card today and take your business towards greater visibility and stronger connections. For business inquiries, call 55099389 or download the QBCD app now. Connect, promote, grow.
7: Hi, this is Anuradha Podwal.
8: This is Vinod Rathod and we are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
9: Hi, I am Kajiva Rahman. We are coming to perform in your city, Doha, Qatar.
10: Experience the magic of their voice on 30th October 2026 at Aspire Zone Ladies Sports Hall, Doha, Qatar, 6:30 p.m. onwards. In association with Indomie Noodles, Lulu Hypermarket, iPay and Green Printers, online ticketing partners, qtickets.com, Platinum List, Virgin Megastore and S-City. For more information, contact 6004369 and event by Rami Productions International.
11: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
12: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
13: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल,
14: क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
15: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
16: 89.6
5: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: अब आप एक कंट्री की पॉपुलैरिटी कैसे पता करते हो? Obviously, जितने ज्यादा लोग वो कंट्री विजिट करते हैं, दैट इज द इंडिकेटर ऑफ द पॉपुलैरिटी. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. और आज की गर्मा गर्म खबर है.
1: क्या खबर कतर?
0: कि कतर के लेटेस्ट टूरिज्म नंबर्स आ गए हैं. तो 2026 में अब तक 26 लाख से ज्यादा लोग हमारे कतर विजिट कर चुके हैं. यस, कतर टूरिज्म के लेटेस्ट फिगर्स के अकॉर्डिंग पहले 9 मंथ्स ऑफ 2026 में 2.614 मिलियन विजिटर्स कतर आए हैं. लैंड, एयर और सी एंट्री पॉइंट्स मिलाकर सिर्फ सितंबर में ही अगर देखा जाए तो अराउंड 2,76,000 विजिटर्स आए हैं, जो पिछले साल के सितंबर से 1.1% ज्यादा भी है. एंड इंटरेस्टिंगली सबसे बड़ा शेयर जीसीसी कंट्रीज का रहा है, अराउंड 40.9%. उसके बाद एशिया एंड ओशिनिया 21% एंड देन यूरोप है 20.6% से. और जब 26 लाख का नंबर सुनते हैं ना तो रियलाइज होता है कि कतर अब सिर्फ स्टॉप ओवर या बिजनेस डेस्टिनेशन वाली इमेज से अब काफी आगे निकल चुका है. हम यहाँ रोज की लाइफ जीते हुए शायद नोटिस ना करें, लेकिन दुनिया के 26 लाख लोग जो है इस साल कतर को एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन जरूर मानते हैं. और मानना भी चाहिए भाई, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ कतर ने अपना एक बेंचमार्क सेट किया है कि टूरिज्म है लेकिन लग्जरी टूरिज्म जो है वो आपको कतर में मिलेगी. माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ राइट ऑन मिर्ची. इट्स हॉट
2: Mirchi Mornings, brought to you by Kim's Health Medical Center.

0: अच्छा।
1: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
2: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
1: Powered by iPay Wallet.
3: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ. No stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
4: Let's do the iPay.
1: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
5: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
6: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
7: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
8: Baladna.
7: Taste that Qatar loves.
1: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.

0: अच्छा एक आंकड़ा बता रही हूँ आपको, गेस करो कि किस चीज का हो सकता है। 628,118। नहीं नहीं ये कतर में रहने वाले इंडियंस की पॉपुलेशन नहीं है, ये सिर्फ एक महीने में पीएचसीसी हेल्थ सेंटर्स में रिकॉर्ड हुए विजिट्स का नंबर है। यस वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, सिंपली आफ्टरनून है आपके साथ दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग। एंड प्राइमरी हेल्थ केयर कॉर्पोरेशन ने सेप्टेम्बर के फिगर्स रिलीज किए हैं एंड अक्रॉस कतर हेल्थ सेंटर्स में टोटल 628,118 विजिट्स रिकॉर्ड हुए हैं। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक करके देखें तो सबसे बड़ा शेयर जो है फैमिली मेडिसिन क्लिनिक से आता है, मोर देन 3 लाख विजिट्स। उसके अलावा डेंटल क्लिनिक्स में अराउंड 39,000 से ज्यादा विजिट्स हुए हैं, वेल बेबी क्लिनिक्स में 17,000 के करीब और मेटरनल हेल्थ क्लिनिक में ऑलमोस्ट 8,000 विजिट्स रिकॉर्ड हुए हैं। लेकिन मुझे एक नंबर और इंटरेस्टिंग लगता है, हेल्थ केयर के बारे में हम सिर्फ फिजिकली हेल्थ सेंटर्स जाने तक लिमिटेड नहीं है। सेप्टेम्बर में पीएचसीसी ने 40,000 से ज्यादा टेलीफोन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड किए हैं और पीएचसीसी का 1600 कॉल सेंटर सेपरेटली 14,000 से ज्यादा कॉल्स हैंडल कर चुका है। और जब आप एक महीने के ये सारे नंबर्स एक साथ देखते हैं तब एक्चुअली रियलाइज होता है कि कतर का प्राइमरी हेल्थ केयर नेटवर्क कितने बड़े स्केल पर एवरीडे लाइफ का पार्ट है। फैमिली डॉक्टर्स से लेकर डेंटल केयर, मदर एंड बेबी सर्विसेज और फोन कंसल्टेशंस तक हर दिन थाउजेंड्स ऑफ पीपल किसी न किसी फॉर्म में सिस्टम यूज कर रहे हैं। 628,000 प्लस विजिट्स इन जस्ट वन मंथ नंबर बड़ा है, लेकिन उसके पीछे सिंपल सी बात यह है कि हेल्थ केयर अवेलेबल होना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह है कि उस तक पहुँच पाना। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
2: Yeah, the meat bro.

0: Hollywood, Bollywood, Bolder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कंगना रनौत, आपका जो होने वाला हस्बैंड है उसने आपको छोड़ दिया है एक समोसे के लिए, आप उस समोसे को क्या कहेंगे?
3: जिंदगी में एक ऐसा काम किया है जो कि एक नींबू और मिर्च भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुमने मेरी नजर उतारी है। अच्छा तुम उसे ले गए और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अब हम दोनों मिलके चाय पियेंगे। एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी चाय के साथ।
2: समोसे के साथ एक हाइपोथेटिकल कॉन्वर्सेशन करती हुई कंगना रनौत ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood Bollywood Bollywood Bollywood
1: Only on Mirchi It's hot
4: Kids are back to school busy schedules homework classes tests phew so much to do we know education is important but hey little moments of fun are important too so are you ready to make your school day a little more exciting
5: because Mirchi Recharge driven by GWM is coming to your school Mirchi RJs will be there with fun games musti exciting prizes and lots of surprises because learning comes with responsibility but responsibility deserves a little fun too
4: this initiative is driven by GWM
6: dosti kai kusule madam no sorry no thank you
7: भाई साहब सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
8: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
9: खूब मिलेगा, मिलेगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: डिजाइन तू करे ब्लो, बाकी करे शाइन तू करे ग्लो। जीन्स डाली डाली तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो। बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज तू है सैवेज बेबी तू है रॉ। मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लॉ। Baby let's go right now, देखो मुझे वेट ना इतने कराओ। लक तेरा लीन बात तेरी मीन, डाइटिंग पे है तो क्यों खाती भाव।
1: Hold the

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: अच्छा, इनके वजह से आपने कतर की ये जगह एक्सप्लोर की है, तो फिर थैंक यू तो बनता ही है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। और कतर में रहते हुए ना, हम सभी के कोई फेवरेट प्लेसेस होती है, कुछ फेवरेट लोग होते हैं, कोई रेस्टोरेंट होता है जो हम हर किसी को रेकमेंड करते हैं, या फिर कोई एक ऐसी जगह जहाँ पर हर रिलेटिव या कोई भी फ्रेंड्स फैमिली आपके आते हैं तो उन्हें लेकर ही जाते हैं, या फिर ऐसा कोई कॉन्टेंट क्रिएटर जिसके थ्रू कतर का एक नया पहलू आपको पता चला है, तो फिर इन्हें स्पेशली थैंक यू बोलना तो पड़ता ही है, राइट? तो वो कैसे, वो ऐसे कि कतर टूरिज्म अवार्ड 2026 की जो शॉर्टलिस्ट है वो अनाउंस हो गई है। ये अवार्ड्स जो है कतर टूरिज्म और यूएन टूरिज्म के कोलैबोरेशन में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और इस बार रिस्पांस काफ़ी ह्यूज रहा है। 1623 से ज़्यादा सबमिशंस में से 276 नॉमिनीज शॉर्टलिस्ट हुए हैं अक्रॉस 35 सब कैटेगरीज एंड 7 मेन कैटेगरीज। और कैटेगरीज में सिर्फ होटल्स तक लिमिटेड नहीं है, सर्विस एक्सीलेंस के साथ रेस्टोरेंट्स और कैफेज के लिए गैस्ट्रोनॉमिक एक्सपीरियंसेस, अट्रैक्शंस एंड एक्टिविटीज, वर्ल्ड क्लास इवेंट्स, डिजिटल फुटप्रिंट, स्मार्ट एंड सस्टेनेबल टूरिज्म, बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल, शॉर्टलिस्ट में आउटस्टैंडिंग फाइन डाइनिंग भी है, कैजुअल डाइनिंग भी है, नोटवर्थी कैफे भी है, ऑथेंटिक कतरी डाइनिंग भी है, एंड टूर गाइड ऑफ द ईयर जैसे बहुत सारे अवार्ड्स हैं। लेकिन अब हमारे पार्ट पर आते हैं यहाँ पर, कि जैसे मैंने कहा कि यार थैंक यू बोलना तो पड़ता ही है, जैसे कोई कंटेंट क्रिएटर जिसकी वजह से आपको कोई कतर की जगह डिस्कवर की है, तो फिर आप कैसे कहेंगे ये? पब्लिक वोटिंग जो है अब ओपन है टिल 12th of October। ये स्पेसिफिकली टू कैटेगरीज के लिए, टूरिज्म इन्फ्लुएंसर यानी कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर और आउटस्टैंडिंग कतर ट्रैवल व्लॉग ऑफ द ईयर। कंटेंट क्रिएटर कैटेगरी में 10 नॉमिनीज हैं और ट्रैवल व्लॉग कैटेगरी में 7। तो अगर किसी क्रिएटर की वजह से आपने कतर की कोई हिडन प्लेस डिस्कवर की कोई, या फिर कोई रेस्टोरेंट ट्राई किया है, या वीकेंड का प्लान बना है, तो अब उनके लिए ऑफिशियली आप वोट कर सकते हैं। वोटिंग कतर टूरिज्म अवार्ड्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, और विनर्स को 23 नवंबर की अवार्ड सेरेमनी में रिकग्नाइज किया जाएगा। सो स्क्रोलिंग तो वैसे भी हम करते ही हैं, इस बार फेवरेट क्रिएटर के लिए सिर्फ लाइक नहीं, एक वोट भी दे देना। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: वेल, वीकेंड आ गया है और आफरीन आपको एंटरटेनमेंट के ऑप्शंस ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को, राइटर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखते हैं भाई ओटीटी पर क्या जलवा चल रहा है।
2: अरे भाभी जी, एकदम लेटेस्ट डिजाइन है,
3: फ्रेश है भैया, फ्रेश है, एकदम नया आया है।
4: अरे मार्केट में नया क्या है?
1: वेल, मार्केट में नया नेटफ्लिक्स के परिणीति चोपड़ा की एक अपकमिंग मूवी आई है। देख रही हूँ आजकल परिणीति चोपड़ा ओटीटी फोरम में बहुत ज्यादा नजर आ रही है। इसका जो नाम है, इसका नाम है रिपोर्टिंग लाइव एंड दिस इज अगेन अ क्राइम इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर। इससे पहले भी जो इनकी मूवी आई थी शक, वो भी एक थ्रिलर मूवी जैसी थी, सस्पेंस था उस पर काफी। वेल अगर इसकी बात करें तो इसमें परिणीति चोपड़ा जो है संध्या का किरदार निभाती है, एम्बिशियस यंग जर्नलिस्ट है, एंड इनके साथ जो है देवेन भुजानी। वेल, आई एम मोर लुकिंग फॉरवर्ड टू सी देवेन भुजानी। वेटरन एक्टर है भाई, ये कॉमेडी भी करते हैं एंड बहुत मजे के एक्टर है। फिलहाल उनको हमने चुंबक में भी देखा था, सो वो वहां पर भी बहुत मस्त उन्होंने एक्टिंग की थी। उसके बाद बात करते हैं इमरान हाशमी की मूवी आवारापन 2, ये जो है अमेजोन प्राइम पर ये भी आ गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इश्का ये एक सीरीज है विच इज ऑफ ऑल न्यू कैरेक्टर्स है इसमें। उसके बाद अगर बात करें तो पूजा मेरी जान, ये जो है ये Z5 में क्राइम थ्रिलर अगेन जो आ गई है, और इसमें आपको मृणाल ठाकुर नजर आएंगी, हुमा कुरेशी नजर आएंगे, विजय राज भी है। सो यस, द स्टारकास्ट लुक्स क्वाइट इंप्रेसिव। और थोड़ा सा कॉमेडी के बात करते हैं, माई फेवरेट जॉनर ऑफ एंटरटेनमेंट आई वुड से इज कॉमेडी। दो पहिया सीजन 1 आपने देखा था? अरे इसका जो स्टारकास्ट है ना, बहुत ही गजब है। गजराज राव है, रेणु शाणे हैं, स्पर्श श्रीवास्तव जो लापता लेडीज में था, यस वही है इसमें, एंड सो मेनी मोर। सो आई थिंक सो इसका जो सीजन 2 ये भी मजेदार होगा, बहुत ही फनी होगा, ये भी आप देख सकते हैं। वेल, अमेजॉन प्राइम पर ये भी आ चुका है। सो काफी सारे ऑप्शंस आफरीन लेकर आती है, सो यू जस्ट हैव टू पिक फ्रॉम दिस और अपना वीकेंड एंजॉय कीजिएगा। राइट हियर आफरीन है आपके साथ, माइक से दिल तक ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Milci. Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieva la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: भाई साहब, श्रीनिवास पुरी थाने से बोल रहे हो, मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
1: मोबाइल?
2: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है, ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
1: क्या रिपोर्ट आ गई है?
2: यही क्या, ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कम्प्लेट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
1: मोबाइल चोरी हो गया?
2: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
1: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
2: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
1: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
2: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
1: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
2: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
1: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
2: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
1: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
2: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
1: हाँ जी सर।
2: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
1: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
3: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
1: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
6: GWM के मिर्ची रिचार्ज में DMIS स्कूल में बच्चों ने किया फन। लेट्स हियर इट फ्रॉम देम।
7: इट वाज द बेस्ट, आई लाइक द मैजिक शो।
8: मैजिक शो? एंड यू?
7: इट वाज वेरी नाइस।
8: यू लाइक्ड इट?
7: यस।
8: वी शुड कम अगेन?
7: यस।
8: व्हाट्स योर नेम?
7: आयरा।
8: एंड योर्स?
7: अनविता।
8: व्हाट वाज द बेस्ट?
7: द मैजिक शो।
9: दिस रिचार्ज इज सो कूल, बेटर देन एनीथिंग एल्स।
10: Thank you, Mirchi. Thank you, GWM. We enjoyed. It's hot.
11: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
12: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा,
13: दोनों मिलेगा। कतर
14: का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
15: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot. 89.6, 89.6.
16: It's hot.

0: मिर्ची पर इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस।
1: हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर समिन समीद। आई एम साइकियाट्रिस्ट एट नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर। आई एम हियर टू टॉक अबाउट टेकिंग केयर ऑफ आवर मेंटल हेल्थ। चेक इन टुडे, यू कैन चेक इन ऑन समवन यू केयर अबाउट। अ सिंपल हाउ आर यू रियली डूइंग कैन मीन अ लॉट। यू डोंट नीड टू हैव ऑल द आंसर्स। समटाइम्स लिसनिंग विदाउट जजमेंट एंड सिंपली बीइंग देयर is absolutely enough. And finally, always seek help when in need.
2: Take care of your mind. It matters.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: देखिए बड़े ही रिलेटेबल बात है कि हमारी ये जो मेहनत और सक्सेस तक का जो सफर है ना, ये हम सभी कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल से पार करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। एंड ज्ञान वाली बातें नहीं है, बड़ी ही रिलेटेबल बात है कि कभी ना कभी लाइफ में प्रॉब्लम हमको ना मेहनत करने से नहीं होती है, है ना, लेकिन प्रॉब्लम उससे होती है कि जब मेहनत कर रहे होते हैं बस रिजल्ट कहीं ना दिख रहा नहीं होता, और फिर वो डाउट, वो ओवर थिंकिंग सारी आ जाती है कि यार सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि हम, कि इतना टाइम और एफर्ट्स जो लगा रहे हैं कुछ बनेगा भी। एंड आई थिंक सो यही ख्याल पर, यही इमोशंस जो हम कभी ना कभी गुजरे हैं इसके थ्रू, इस पर आज के मेरी अल्फाज है।
0: आफरीन की डायरी से शायरी। शायरी
1: तो अर्ज किया है कि आज जो दर्द है कल वही कहानी होगी, आज जो आंखों में नमी है कल वही रवानी होगी, आज जो राह मुश्किल है कल वही आसान होगी। सुन रहे हो कि आज जो राह मुश्किल है कल वही आसान होगी, आज जो मेहनत खामोश है कल वही पहचान होगी, बस वक्त के आगे थोड़ा और टिक जा, बस वक्त के आगे थोड़ा और टिक जा, एक दिन तेरी हर खामोश दुआ तेरी जीत की जुबां होगी। क्या बात है, मुझे पर्सनली वो लाइन काफ़ी अच्छी लगी इसमें कि आज जो मेहनत खामोश है कल वही पहचान होगी, क्योंकि हर चीज़ का रिजल्ट इमीडिएटली ऑफ कोर्स नहीं मिलता, और किसी ने सच ही कहा ना कि सब्र का फल मीठा होता है। और बस इसी के साथ माइक से दिल तक आप शीन आगे बढ़ते हुए अगले गाने की तरफ ऑन मिट्री, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स पर आपका स्वागत है आफरीन के साथ एंड इट इज़ टाइम कि हम ज़रा गोल्ड रेट्स पर आज नज़र डालें। वेल आज के गोल्ड रेट्स ये कहते हैं दैट पैम्प 1 ग्राम गोल्ड बार इज़ फॉर 568 का थ्री रियल, पैम्प 5 ग्राम गोल्ड बार इज़ फॉर 2661 का थ्री रियल, पैम्प 10 ग्राम गोल्ड बार इज़ फॉर 5252 का थ्री रियल, वेर एज 1 ounce गोल्ड बार इज़ फॉर 16234 का थ्री रियल एंड 10 तोला गोल्ड बार इज़ फॉर 60264 का थ्री रियल। मैं हूँ आफरीन आपके साथ दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
2: and earn Qatar Airways Avios today.
1: Visit our branches or download the app now.

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
1: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
0: Powered by iPay Wallet.
2: अपनों को भेजिए पैसे with best rates iPay Wallet के साथ. No stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do that.
0: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
4: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
5: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
6: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
7: Baladna.
6: Taste that Qatar loves.
0: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.

0: जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
1: हेल्दी स्किन, ब्यूटीफुल हेयर और लास्टिंग कॉन्फिडेंस, अब एक्सपर्ट केयर के साथ
2: किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर बर्मा सिटी में कंसल्ट करें। डॉक्टर श्वेता बालचंद्र राव, स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी,
1: बोटॉक्स एंड फिलर्स, लेजर हेयर रिडक्शन, हाइड्राफेशियल, पीआरपी, एक्ने, पिगमेंटेशन और मेलास्मा ट्रीटमेंट्स।
2: कॉल 4419 4333। किम्स हेल्थ बर्मा सिटी। बुक योर कंसल्टेशन टुडे।

0: 네.
1: 칼칼 호다.
2: Only on 89.6 Mirchi 1

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: अर्शद वार से आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम चल रहा है, चाहे ओटीटी की बात हो या थिएटर की। प्रीतम और पेड्रो में आपने राजकुमार हिरानी से अच्छे खासे पैसे मांगे होंगे, नहीं?
3: पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए। वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है। पिक्चर पिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा।
4: उनकी दो एक सीरीज एक फिल्म, मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूँ।
2: राजकुमार हिरानी में एवरीवन बी एज अनएम्प्लॉयड एज यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोल्डाल। बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: GWM के मिर्ची रिचार्ज में DMIS स्कूल में बच्चों ने किया फन। लेट्स हियर इट फ्रॉम देम।
6: इट वाज द बेस्ट। आई लाइक द मैजिक शो।
7: मैजिक शो एंड यू?
6: इट वाज वेरी नाइस।
7: यू लाइक्ड इट?
6: यस।
7: वी शुड कम अगेन?
6: यस।
7: व्हाट्स योर नेम?
6: आयरा।
7: एंड योर्स?
6: अनविता।
7: व्हाट वाज द बेस्ट?
6: द मैजिक शो।
8: दिस रिचार्ज इज सो कूल, बेटर देन एनीथिंग एल्स।
9: Thank you, Mirchi. Thank you, GWM. We enjoyed. It's hot.
10: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
11: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
12: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के?
11: कम है के?
13: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
14: 89.6 FM, Mirchi 1.
15: It's hot.
16: इश्क

0: चलिए दोस्त, एक नॉर्मल से डे को स्पेशल बनाने का फॉर्मूला बताती हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। और देखिए ना, हमारे घर में ऐसे कितनी चीजें होती है जो हम ना स्पेशल ओकेशंस के लिए रखते हैं, जैसे आपका वो एक स्पेशल ड्रेस है या फिर नॉर्मल सा एक डिनर सेट है, अच्छा वाला एक जो आपने सिर्फ अपने गेस्ट के लिए रखा हो, या फिर वो एक्सपेंसिव परफ्यूम हो सकता है जो आप ना सिर्फ स्पेशल ओकेशन के लिए बचा कर रखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, कभी कभार हम चीजें इतना सेव करते हैं वो ओकेशंस का कि वेट थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो जाता। देखिए, एक नॉर्मल से दिन को थोड़ा सा अगर आपको स्पेशल करना है या अपने आप को एक फील गुड वाली फीलिंग देनी है कि नहीं यार, दिन को कुछ अच्छा सा एक अपग्रेड करते हैं, तो ये सारी चीजें जो आपने बचा के रखी है ना, वो स्पेशल ड्रेस ही क्यों ना हो, आपका फेवरेट वाला, या परफ्यूम लगा लिया, या वो चीज़ें जो आपको पसंद है, वो अच्छे वाले कॉफ़ी मग में जिसमें गेस्ट को आप कॉफ़ी देते हो वो लेकर बैठ लिया, तो बस देख लीजिए कहीं ना कहीं आपको ना अच्छा लगेगा थोड़ी देर से के लिए, क्यों ना सही। लेकिन कभी कभी अच्छी चीज़ यूज़ करने से नॉर्मल डे स्पेशल बन जाता है। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ। मेरी ड्यूटी फिलहाल होती है खत्म, मैं मिलूंगी जल्द ही। आप अपना ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले इजाजत है जाने की, टाटा बाय बाय, सायोनारा, हैव अ ग्रेट डे, और सुनते रहिएगा मिर्ची, इट्स हॉट।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

सलाम नमस्ते कतर वालों, क्या हाल चाल। हाँ जी, हाल चाल तो आपके सबके अच्छे ही होंगे, लेकिन एक दिन मैं ऐसे ही बैठ के सोच रही थी और मैं सोच रही थी कि हमारे पास ना बैक ऑफ द माइंड कितने काम है करने के लिए। हमको ये भी करना है, वो भी करना है। फॉर एग्जांपल, हमें अपनी कोई हॉबी थी जो हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जिंदगी में करना चाहते थे लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा रीज़न आपको बताऊँ क्या है? यस, जो आपके हाथों में फ़ोन रहता है। इसके बारे में कोई बात नहीं करता लेकिन ये सच्चाई है। आई एम नॉट बीइंग अ मदर टू एवरीवन, लेकिन ये एक सच्चाई है जिंदगी की जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। दैट इज हमारा फोन, जिसने हमारा सारा टाइम ले लिया है और पूरी अटेंशन हम अपने फोन को ही देते हैं। हम किसी इंसान से इतना नहीं जुड़े हैं जितना हम अपने फोन से जुड़े हैं। हमारे लिए हमारा फोन उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि सांस लेना। बस उसी बात पे मैं एक एग्जांपल कहना चाहती हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ में जो मैंने फेस किया है वो ये है कि फ़ोन ने मेरी ज़िंदगी का टाइम इतना ले लिया है कि मुझे मेरे लिए टाइम कम लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी हॉबीज़, जैसे मुझे आर्ट का शौक़ था, डांस का शौक़ था, गाने का शौक़ था, ये सब शौक़ ना मैं अपने ना करके मैं अपने फ़ोन पे लोगों को करते हुए देखती हूँ। एंड आई फील सैटिस्फाइड कि हाँ चलो कोई कर रहा है फॉर मी। बस यही हैबिट जो है फ़ोन ने मेरे अंदर डाल दी है। आई होप आप अगर इस बात पे एग्री करते ना तो मुझे ना ज़रूर मुझे मैसेज करके बताइएगा। इंस्टाग्राम हैंडल पे जो है मिर्ची ईशा के नाम से, एंड ऑल्सो आप मिर्ची वन कतर पे भी बता सकते हैं। 5110896 पे भी आप बता सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। भाई मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ कि सारा टाइम मेरा मेरी हॉबीज को खत्म करते हुए लोगों की देखते हुए मेरा निकल जाता है। और इसी के साथ आज हम शो शुरू कर रहे हैं हमारा मिर्ची वीकेंड वाइब्स, जहां पे हम बात करने वाले हैं बहुत सारे इवेंट्स की। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. Ne vin pa la burga. Mirci, burga.
1: हेलो,
2: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोल रहे
2: हैं। राज जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
2: मैं पीयूष बोल रहा हूँ। राज जी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
1: लेकिन है किस लिए ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
2: नहीं,
1: है?
2: नहीं वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
1: तो
2: हाँ वही वही वही मैं आपको बता रहा हूँ।
1: पूरी
2: नहीं नहीं पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ हैं,
1: तो बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास? तो
2: नहीं नहीं आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना? ये
1: कॉपी मुझे भी भेजना।
2: राजी एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
1: अपने फ्रेंड्स से, उनको भी भेज।
2: हाँ उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहें तो?
1: हाँ बिल्कुल बताइए।
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया आपका, अब आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
1: कुकड़ों को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
5: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400, with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start, and lockout assistance. Plus, flexible payments and 7% cash back.
6: Call 800-0786 or visit BimaOnline.com.
4: Bima for your peace of mind. Terms and conditions apply.
7: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew. So much to do. We know education is important, but hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
8: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes, and lots of surprises. Because learning comes with responsibility, but responsibility deserves a little fun too.
7: This initiative is driven by GWM.
9: खट खट।
10: कौन है?
9: अज्जू।
10: अज्जू कौन?
9: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए।
10: खट खट, who that?
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

देखिए बचपन से ना आज तक मैंने एक कहावत जरूर सुनी है अपने बड़ों से, दैट इज कि जैसा देश वैसा भेष। एंड इट सिंपली मीन्स कि जिस देश में आप रहते हो उस देश का ट्रेडिशन कल्चर को इतना करीब से देखिए और इतने करीब से उसको यू नो फॉलो करिए ताकि आपको लगे कि आप इस कंट्री के ही फैमिली मेंबर हो। तो बस अगर आपको भी मेरी तरह इन ट्रेडिशंस को और क्रिएटिव साइड्स को देखना पसंद करते हैं या आप उसमें यू नो अपने आप को इंडल्ज करना, डिग करना पसंद करते हैं ऐसे कल्चर में, तो आपके लिए एक इवेंट लाई हूँ। जी हाँ, बता दूँ कि होने जा रहा है मीना डब्ल्यू फीना, जो हो रहा है आउटडोर कोर्टयार्ड अल हजम में। एंड ये 24 सितंबर से शुरू हो चुका है एंड 24 अक्टूबर तक रहेगा। तो नो हरी, आप आराम से जाइए जब मर्जी। एंड इसके टाइमिंग्स हैं 3 PM to 11 PM। एंड ऑफ कोर्स इसमें कोई भी टिकट की ज़रूरत नहीं है आपको, टोटली फ्री है एंट्री। एंड इसके अलावा आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं वो एटमोसफेयर ऑफ यू नो कतारी बिजनेसेस, जो छोटे छोटे बिजनेसेस या आपका कह लो कि हैंड क्राफ्टेड चीज़ें हैं या पेंटिंग्स हैं जो कतर की प्रॉपर जो यू नो ट्रेडिशन शो करता है, हेरिटेज शो करता है। इवन बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद आपको नहीं पता होंगी कतर की, वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो अगर आप जाना चाहते हैं, क्रिएटिव साइड देखना चाहते हैं कतर की, जाइए इस वीकेंड और इन्जॉय करिए बिकॉज दिस इज द परफेक्ट टाइम, बिकॉज आजकल मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, फैमिली के साथ शाम को जाके इन्जॉय कर सकते हैं। और अगर आप भी मेरी तरह पसंद करते हैं ऐसी नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, तो ज़रूर जाइएगा। And stay tuned with me only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.

0: एनर्जी पर इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस।
1: हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर समीन समीद। आई एम साइकियाट्रिस्ट एट नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर। आई एम हियर टू टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स दैट वी ऑफन इग्नोर व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ। दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर फॉर अस टू नॉट फॉरगेट अबाउट टेकिंग केयर ऑफ आवर मेंटल हेल्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक अ पॉज। Life can get very busy and sometimes we forget to pause. Take a few minutes today to step away from your phone, breathe deeply and simply be present. You don't always have to keep going. Sometimes a small pause is exactly what your mind needs.
2: Take care of your mind. It matters. अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून।

बड़ी कानाफूसी चल रही है कि बड़ा सा इवेंट आने वाला है, तो भाई ये क्या सच है? देखो मिर्ची ईशा आपके साथ है और आपको कोई इवेंट के बारे में ना पता हो, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं ये ऐसे पॉसिबल ही नहीं होने देती। लेकिन आपको बता दूं कि भाई सच्ची में एक स्नीक पीक लेके आई हूँ एक ऐसे इवेंट की जो भी शुरू भी नहीं हुआ है, होने वाला है जल्दी एक ऐसा बबल प्लैनेट इवेंट जहाँ पे एक इमर्सिव एक्सपीरियंस आने वाला है आपके दोहा में बहुत बड़े पैमाने पे, क्योंकि यहाँ पे 10 से भी ज्यादा इमर्सिव थीम्ड रूम्स हैं, वीआर एक्सपीरियंसेस हैं, इंटरैक्टिव सिमुलेटर्स हैं, ऑप्टिकल इल्यूजंस हैं, जायंट्स फेयर्स हैं, बलून्स, कलरफुल विजुअल इफेक्ट्स, ओ माय गॉड क्या क्या नहीं है, जो बोलोगे आपको वही मिलेगा। आज के जमाने का कोई भी इवेंट आप निकाल के देख लो, इमर्सिव एक्सपीरियंस के बिना मजा ही नहीं आता। तो बस अगर आप भी चाहते हैं इस इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस को अपनी पूरी फैमिली के साथ देखने का जो मौका मिल रहा है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा क्यू की इसकी डेट जो है दैट इज 6th दिसंबर से ये शुरू होगा और ये 6th फरवरी 2027 तक रहेगा। एंड ऑफकोर्स ये बता दूं कि ये जो इवेंट है ना, ये आपका विंटर वेकेशन के टाइम बहुत काम आने वाला है, बड़ा मजा आएगा। कतर में हो, विंटर है और ये एक्सपीरियंस है भाई, मजा ही आ जाएगा नेक्स्ट लेवल। QNCC में होने जा रहा है ये, एंड ये हर एज के बच्चों के लिए ओपन है। ऑफकोर्स 17 से एज से जो छोटे बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ ही जाएं तो बेटर है, एंड उसके अलावा चिल्ड्रंस अंडर 4 आर टोटली फ्री। भाई इतना बड़ा और इतना वाइड एक्सपीरियंस हर बार मिले ऐसा जरूरी नहीं होता है, तो जब मिले फटाक से उसका इस्तेमाल करिए, यूज करिए और एक्सपीरियंस का लुफ्त उठाइए एंड एंजॉय विद मी, यानी कि मिर्ची ईशा के साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसे इवेंट्स लेके मैं आती हूँ थोड़ी देर में। सो स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 FM।

0: बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: भूमि पेडनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
3: In our school, toilet used to be the place जहाँ पे सब जाके romance करते थे। That used to be the spot in my school.
4: Toilet?
3: हाँ।
4: School था, कंजर खाना खुला हुआ था।
3: तो दोनों।
2: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा। नहीं, आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: भट्ट
6: भट्ट, अरे भट्ट हूँ।
5: भट भट भट भट भट भट भट, बाइक बहुत आवाज करती है।
6: खट खट, हू दैट?
1: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। मिर्ची इट्स हॉट।

आने वाला टाइम कतर का जो मौसम है वो होने वाला है बहुत हसीन, जहाँ पे आपको फैमिली के साथ और आउटडोर एक्टिविटीज करने का मौका मिल सकता है। देखिए, इस मौसम के साथ साथ बहुत सारे इवेंट्स भी आते हैं, लेकिन इवेंट्स से हटके थोड़ा बात करूं कि पार्क्स में जहाँ पे आप पिकनिक मनाते हैं, जहाँ पे आपकी फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताती है, दैट इज़ द आउटडोर एरियाज। द एरियाज जहाँ पे बच्चे बहुत पसंद करते हैं जाना वो है पार्क्स। तो ऐसे ही एक नया पार्क लेके आई हूँ। हाँ जी, एक पार्क बताती हूँ, नया प्लेग्राउंड अल खुजामा पार्क, जो एक नया कतर में ओपन हुआ है, दैट इज अ पब्लिक पार्क और ये अल वखरा में लोकेटेड है। अगर आप अल वखरा के पास पास रहते हैं आप जा सकते हैं, इस वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ, एक लुक देख सकते हैं कि नया पार्क किस तरीके का बना है, क्या है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। बच्चों का प्ले ग्राउंड के अलावा यहाँ पे आपको ग्रीन स्पेसेस मिलेंगी, जॉगिंग ट्रैक मिलेगा एंड आउटडोर जो फिटनेस इक्विपमेंट है वो भी इंस्टॉल किए गए हैं। सिटिंग जो एरियाज हैं फॉर फैमिलीज इट्स इज देयर, जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक पार्क है एंड यू कैन हैव अ लॉट ऑफ फन देयर विद फैमिलीज, पिकनिक कर सकते हैं, इवनिंग वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग एंड ऑफ कोर्स ऐसे ही हिडन जेम्स आपको मैं बताने आती रहती हूँ हर वीकेंड। उसके लिए ना आपको बस यही करना है, मुझे सुनना है, यानी कि मेरी शीशा को, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

जब भी अक्टूबर और नवंबर का महीना आता है ना, तो बस ऐसा लगता है कि बस कतर अब हो जाएगा खूबसूरत हवाओं के साथ और बीच पे बैठ के आराम से एंजॉय करेंगे। तो बस आपके लिए ना ऐसी मजेदार से ऑप्शन लाई हूं। तो अपने बैकपैक बांध लीजिए, अपने पिकनिक बैग्स भी बांध के रख लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे मज़ेदार फ्री बीच के ऑप्शंस लाई हूँ जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हैं और आप इन्जॉय भी कर सकते हैं। प्लेग्राउंड्स भी हैं इनके साथ साथ, आप बच्चे इन्जॉय कर सकते हैं प्लेग्राउंड्स में, आप बीच पे बैठ सकते हैं, तो आपको टेंशन फ्री रह के आराम से बच्चों को हैंडल कर सकते हैं। तो आपको बता दूं भाई, कुछ ऑप्शंस बता रही हूं, सफ़ा अल तूक बीच फैमिलीज़ के साथ जा सकते हैं, वहाँ पे आपको अम्ब्रेला, सिटिंग, रेस्टोरेंट, कियोस्कीज, लाइटिंग, टॉयलेट्स, ये सब मिलेगा। चिल्ड्रन प्लेइंग एरिया, ग्रीन एरिया सब मिलेंगे। इसके अलावा सी लाइन पब्लिक बीच, जिसको आप सब जानते ही हैं, उसके बारे में ज्यादा मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एंड अगर बात करें अल घारिया बीच की, तो ये भी फैमिलीज के लिए है, वहां पे प्लेग्राउंड्स, रेस्टोरेंट्स, आपको लाइटिंग, टॉयलेट्स, अम्ब्रेलास, ये सब मिलेगा। एंड अल फारखिया बीच, जहां पे फैमिलीज जा सकती हैं, एंड यहां पे भी बहुत से ब्राइट ऑप्शंस हैं प्लेग्राउंड्स एंड ऑल्स के। देन अल खारिज बीच, यहां पे भी बहुत से ऑप्शंस हैं, एंड फॉलोड बाय अल ममलाहा बीच फॉर वुमेन ओनली, दिस इज फॉर वुमेन ओनली, एंड यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स, लाइटिंग, टॉयलेट सब कुछ मिलेगा, अम्ब्रेलाज एंड ऑल। मैंने आपको बता दिए ढेर सारे ऑप्शंस बीच पे फ्री जाने के विद फैसिलिटीज। आपको करना क्या है, अपना बैग तैयार करना है और बीच के लिए निकल जाना है किसी भी वीकेंड। बस ऐसी ही मजेदार बातों के साथ नई नई जगहों को एक्सप्लोर करते हुए आपको बताते हुए सुन रही है मुझे, यानी कि मिर्ची ईशा को ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La
1: birba, la burga. Mirchi, burga. Hello.
2: Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको। आपका अकाउंट नंबर 337103 राइट?
1: हाँ।
2: One second, sir. सर, आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000।
1: हाँ।
2: One second, sir. आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
1: नहीं तो।
2: आपने नहीं किया है?
1: नहीं।
2: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
1: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
2: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम। मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है। आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले, किसने निकाला, किस पे शक है आपको?
1: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी न किसी को चेक दिया है, ना मैंने एटीएम यूज किया है।
2: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
1: मैंने 2 पैसे भी निकाले।
2: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
1: मैंने कोई पैसा नहीं निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल? ओके
2: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं, लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको। अब मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
1: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पर मेरा नाम लिखा है।
2: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल दिए हैं। मुझे नहीं पता आप
1: ठीक बोल रहे ना, वहीं आके
2: बजाऊंगा। आप मुझे क्या बताएं? आप बदतमीजी से बात मत करिए। सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए, बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी। स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं सर। ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे। 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है।
1: क्या
2: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
1: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
3: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है। 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं, आपके अकाउंट में 1,42,000 रुपए हैं। और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था।
2: लेकिन सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है। नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
5: खटखट
6: पुरेश,
5: बनता
6: बनता हूँ।
5: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
6: खटखट हू दैट,
4: only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: இருக்கு.
1: 89.6, 89.6. It's hot.

0: कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। ये गाना ना मेरे दिल के बहुत करीब है। इस गाने को गाया गया है बाय श्रिया घोषाल एंड सुखविंदर सिंह फ्रॉम द मूवी संजू। लेकिन ये गाना मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि जब मैं कतर में अपना लाइसेंस का एग्जाम देने जा रही थी तो थ्रू आउट दैट जर्नी जब तक मैं लाइसेंस के टेस्ट के लिए बैठी नहीं तब तक मैं ये गाना सुनती रही और सच्ची में मुझे ऐसा लगा कि आज मैं फतेह पाकर ही रहूंगी। एंड आई वाज डैम श्योर और हुआ भी वही, मुझे उसी समय लाइसेंस मिल गया। बट वही बात होती है कि अगर आप अपना प्रस्पेक्टिव पॉजिटिव रखते हो तो हर चीज पॉजिटिव होती है। एंड इसी के साथ एक और गाना जो है मुझे बहुत इंस्पायर करता है, दैट इज फ्रॉम द मूवी लक्ष्य। लक्ष्य का जो टाइटल ट्रैक है संग बाय कर एहसान लॉय एंड लक्ष्य मूवी से ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा की मूवी थी ये, बहुत खूबसूरत मूवी। और इस ट्रैक में भी जो बातें बोली गई ना बड़ी इंस्पायरिंग है कि भाई यही लक्ष्य है तेरा, यू हैव टू गो ऑन। तो इतना इंस्पायर्ड लगता है ना, मतलब ऐसा लगता है कि ये गाना सिर्फ मेरे लिए ही बना है टू इंस्पायर मी व्हेन आई एम वेरी लो इन माय लाइफ। ऐसे ही आपके भी बहुत इंस्पायरिंग सॉन्ग्स होंगे। कोई ऐसा सॉन्ग जो आपको बहुत इंस्पायर करता है मुझे जरूर बताइएगा, मेरे मिर्ची वन कटर अकाउंट पे बताइएगा या फिर आप मुझे मिर्ची ईशा पे भी बता सकते हैं। एंड ऑल्सो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं 5000 1896 पे मैसेज करके बताइए कि आपका ऐसा कौन सा सॉन्ग है जो आपको आपके लो टाइम पे आपको अपलिफ्ट करता है। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।
1: मिर्ची पर इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस।
2: हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर समीन समीद, आई एम साइकियाट्रिस्ट एट नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर। आई एम हियर टू टॉक अबाउट टेकिंग केयर ऑफ आवर मेंटल हेल्थ। चेक इन टुडे, यू कैन चेक इन ऑन समवन यू केयर अबाउट। अ सिंपल हाउ आर यू रियली डूइंग कैन मीन अ लॉट। यू डोंट नीड टू हैव ऑल द आंसर्स। समटाइम्स लिसनिंग विदाउट जजमेंट एंड सिंपली बीइंग देयर is absolutely enough. And finally, always seek help when in need.
3: Take care of your mind. It matters.

कभी कभी हम किसी इंसान को खोने के बाद समझते हैं कि वो सिर्फ एक इंसान नहीं, हमारी एक आदत था, हमारी खुशी था और हमारी कहानी था। वक्त गुजरता गया, बातें खत्म हो गई, पर दिल में एक सवाल आज भी रह गया। काश उस वक्त थोड़ा और जी लेते, काश वो वक्त थोड़ा और रुक जाता। कहते हैं ना कि कुछ लोग जिंदगी में लौट कर तो नहीं आते हैं, बस यादों में रहकर हमें और गहरा बना जाते हैं। लेकिन जिस इंसान ने इस दुनिया से जाना है वो जाएगा ही, हमें बस आदत हो जाती है उसके बिना रहने की। पर हमें पहले लगता है कि हम उसके बिना नहीं रह सकते, लेकिन सब कुछ चलता रहता है। एक इंसान के जाने के बाद भी वैसे ही सूरज उगता है, वैसे ही डूबता है, वैसे ही चांद आता है, वैसे ही सब कुछ होता जाता है। पर वो इंसान का चेहरा और वो इंसान की जो रूह है वो कभी आपको मिलेगी नहीं। इसीलिए बोलते हैं अपनी ज़िंदगी को खूब अच्छे से जिए और हर पल को ऐसे जिए कि वो शायद आपका आखिरी पल हो। तो बस ऐसे ही बातों के साथ सिलसिला जारी रहेगा, मेरे साथ बने रहिए। ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 & 0।

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
1: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
0: Powered by iPay Wallet.
2: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ no stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do the iPay.
0: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
4: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super specialty clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
5: Refreshment partner Baladna. School's back. Time to.

0: भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
1: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
2: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: तुषार कपूर आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल. कितना मजा आया टू माउथ दोज लाइंस.
3: I don't have to mouth those lines.
4: Sorry bro, sorry.
3: तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? नहीं, but I'm a big fan of Sajid Farhad. इनकी नरेशन, मतलब they just translate Rohit's vision so well in this zone, in this genre. And I wish I get to do a film someday where I have to mouth their lines.
2: तुषार कपूर, in fact, we wish कि आपको कभी भी गोलमाल की किसी भी फ्रेंचाइज में लाइंस ना मिले, सिर्फ A E I O U. आप सुन रहे हैं मिर्ची, it's hot.
0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
5: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते. जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है.
6: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है. कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot. Okay, I'll be

बातें तो बहुत थी पर वक्त थोड़ा कम था। आपका साथ मिला तो हर पल कुछ खास था। और जब इस प्रकार की बातें शुरू हो जाएं तो समझ लीजिएगा कि जाने का समय आ चुका है। जी हाँ, और बस अब जाते जाते आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि खुश रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे याद ज़रूर करते रहिए। और उसके साथ अगर मैं चली गई अभी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे हाय हेलो भी भेज सकते हैं मिर्ची ईशा के नाम से, या मिर्ची वन कतर पे भी आप हाय हेलो बोल के मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे सुनते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का रिप्लाई आता है और आप लोग बताते हैं कि हाँ हम आपको सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ ज़रूर रिप्लाई करिएगा। और अब लेती हूँ आपसे अलविदा। टाटा बाय बाय, टेक केयर, और मिलती हूँ आपको अगले वीकेंड। स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: यार एक बात बताना, क्या तुम्हारी मुलाकात ऐसे किसी शख्स से कभी हुई है?
1: मिर्ची अंशु
0: यार देखो, यूं तो जिंदगी के सफर में ना जाने कितने लोग मिलते हैं। आए दिन हमारा आमना सामना किसी ना किसी से होता ही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे मिलने के बाद ये महसूस होता है कि यार अब तक तो हम ठीक थे, लेकिन अब जो है जरा ज्यादा अच्छे होने लगे। क्योंकि क्या है ना, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं। देखो, वो जिंदगी में आपसे कोई बड़े बड़े वादे नहीं करते, आपकी कोई बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं करते, लेकिन बस दो पल की इनसे मुलाकात, वो दो लम्हों का साथ, और अपने आप ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो ही गया। और सच कहूं, अगर जिंदगी में ऐसा कोई खास है ना, तो भाई तुम्हारी जिंदगी में सुकून जरूर है ना, उसे ये बात बताना जरूर, क्योंकि क्यों हर बात कल के लिए छोड़ी जाए। वो कहते हैं ना कि जब कुछ लोग मिले तो दिल को आराम हो गया, बिना कहे जैसे हर दर्द का नाम खोसा गया, रिश्ता क्या था उनसे ये आज तक मालूम नहीं, लेकिन बस वो साथ थे और हर लम्हा जैसे खास हो गया। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु।

0: Energy.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Burga, burga. La vida la burga.
2: हेलो,
3: कुड आई स्पीक टू मनीष प्लीज?
2: स्पीकिंग,
3: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके मनीष, आई नीड योर फेवर, आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी। मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को। मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट, कि पहले इंसान एप था, आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में। यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया, राइट।
2: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
3: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट। एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे। इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके।
2: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा
3: हूँ। वही तो, ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था, तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे। तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स के सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर। आई एम श्योर के सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था। बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी। तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए, कल का रख ले। मेरी बात सुनो, आई एम प्रोफेसर, मेरी बात सुनिए यार। आप हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है।
2: हेलो,
3: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी, मेरी बात सुनिए, मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार, मैं मुर्गा बनाया, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार। मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने जो लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार। इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हेलो शॉप्स, आप प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: अजी सुनो, जब प्यार किया तो डरना क्या। अरे नाना, सिंगिंग पे कोई अटेम्प्ट मेरा इस वक्त नहीं लग रहा, ना ही जिंदगी का। मैं आपको कोई उसूल सिखा रही, कोई तो खास बात है जो बस आप तक पहुंचाने की कोशिश जरूर कर रही।
1: मिर्ची अंशु
0: यार देखो, बात जो है ना बड़ी सिंपल है। अगर बॉलीवुड की फिल्मों की बात करें तो कुछ फिल्में हैं जो हमें एंटरटेन की, कुछ फिल्में हैं जिन्होंने हमें इंस्पायर किया, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी रहीं जिन्होंने पूरी तरह से इंडियन सिनेमा को अमर बना दिया। एंड उनमें से एक फिल्म है मुगले आजम। इमेजिन करें कि वो लव स्टोरी जिस कहानी ने हमारे दिल को कुछ इस तरह से छुआ कि आज भी उसकी झंकार हमें सुनाई देती है, वो लाइव स्क्रीन पर हम ठीक अपनी आंखों के सामने नहीं बल्कि लाइव थिएटर के तौर पर परफॉर्मेंस एक्ट के जरिए देख पाएं तो वो एक्सपीरियंस कितना खूबसूरत होगा। तो जितने भी बॉलीवुड एंड थिएटर लवर्स हैं, ये आपकी ख्वाहिश अब पूरी होने जा रही है ऑन 6th and 7th of November एट कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर अल मयासा थिएटर, जब एक बार फिर से मुगले आजम का जादू हम जी पाएंगे मुगले आजम द म्यूजिकल के जरिए। एंड ये कॉन्सेप्ट जो है ना यार, मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है कि एक कहानी जो जनरेशन पहले सिनेमा पर आइकॉनिक बनी, वो जनरेशन चेंज होने के बाद भी आज भी जिंदा है। अनारकली, सलीम, वो डायलॉग्स, वो म्यूजिक, वो ग्रैंडर, यार इससे खूबसूरत एक्सपीरियंस और क्या होगा। तो अगर आपको लगता है कि 6th and 7th of November को आप भी इस आइकॉनिक स्टोरी को फिर से जीना चाहते हैं तो बस विजिट कतर के पेज पे जाइए, सारे डिटेल्स आपको वहां मिल जाएंगे। फटाफट से टिकट्स जो है आप परचेज करिए, अपने नाम की और एक मेरे नाम की, साथ में मिलकर एंजॉय करें। स्टेडियम टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: मिर्ची पर इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस।
1: हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर समीन समीद। आई एम साइकियाट्रिस्ट एट नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर। आई एम हियर टू टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स दैट वी ऑफन इग्नोर व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ। दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर फॉर अस टू नॉट फॉरगेट अबाउट टेकिंग केयर ऑफ आवर मेंटल हेल्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक अ पॉज। लाइफ कैन गेट वेरी बिजी एंड समटाइम्स वी फॉरगेट टू पॉज। Take a few minutes today to step away from your phone, breathe deeply, and simply be present. You don't always have to keep going. Sometimes a small pause is exactly what your mind needs.
2: Take care of your mind. It matters.

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून।
1: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
0: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
2: बार बार।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6
4: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।
5: ओ बिलो तेरी अख कतल करे लख कतल, जदो मुव करे करे लख कतल, असला भी लोड़ करे टल जा छड़ अखा नाल कर।

यार मुझे एक बात बताना, क्या आपके घरों में भी बचपन के दिनों में दूध को लेकर इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता था? मिर्ची अंशु, यार सच कह रही हूँ, कुछ भूलू या ना भूलू लेकिन बचपन के दिनों का 10th ग्रेड जो है मैं कभी नहीं भूल सकती, जब सुबह सुबह एक दिन हड़बड़ी में मैं दूध पीना भूल गई। एंड भाई साहब, उसके बाद जो कोहराम हुआ ना, उसकी दास्तां बयां करें तो कैसे करें। मेरी दादी अम्मा सीधा सुबह सुबह मेरे स्कूल पहुंच गई वो दूध का टम्बलर लेकर। प्रिंसिपल से बात किया, क्लास के बाहर खड़े होकर मुझे सारे बच्चों के सामने दूध पिलाया कि भाई मेरी बेटी जो है दूध पीना आज भूल गई, जरा सोचो पढ़ाई में दिल लगाएगी दिमाग लगाएगी तो कैसे लगाएगी। एंड उसके बाद आप समझ सकते हो कि पूरे साल भर जो क्लास के बच्चों ने मेरी लगाई है। Having said that, अगर मिल्क की बात करें तो यहाँ पर आपके बीच एक स्पेशल फैक्ट मैं पेश कर दूं, क्योंकि ये आती है बात सीधा हमारे घर से, यानी कि इंडिया से। पता है, अगर हम दुनिया को देखने की कोशिश करें और एक ऐसे देश की बात करूं जो मिल्क का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है भारत का। 1/4 ऑफ द एंटायर मिल्क प्रोड्यूस इन द एंटायर वर्ल्ड इज बाय इंडिया, यानी कि हर 4 बॉटल जो आप मिल्क की देखते हैं उनमें से एक बॉटल जो है समझ जाओ इंडिया अपने खाते में रखता है। लेकिन पता है क्या, भारत और दूध का रिश्ता जो है ना, ये बड़ा कमाल है। मतलब हमारे घर पे तो ये जरूर था कि भाई बच्चा खाना खाए या ना खाए सब कुछ चलेगा, बस दिन में कम से कम 4 ग्लास दूध पी ले। अगर वो हो रहा है तो समझ जाओ इसका ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट घर वालों के हिसाब से तो हो गया। क्या आपके घर में भी ऐसा कोई सिलसिला था कि आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते कि भैया दूध ये तो ना पिया जाएगा? 5001896 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। मीनवाइल यू ऑल स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi, it's hot.
2: कंगना रनौत, आपका जो होने वाला हस्बैंड है उसने आपको छोड़ दिया है एक समोसे के लिए, आप उस समोसे को क्या कहेंगे?
3: जिंदगी में एक ऐसा काम किया है जो कि एक नींबू और मिर्च भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुमने मेरी नजर उतारी है। अच्छा तुम उसे ले गए और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अब हम दोनों मिलके चाय पियेंगे। एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी चाय के साथ।
2: समोसे के साथ एक हाइपोथेटिकल कॉन्वर्सेशन करती हुई कंगना रनौत ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: Only on Mirchi, it's hot.

0: चले जरा पैडल मारो अभियान शुरू करें।
1: मिर्ची अंशु।
0: अरे नाना, इस वक्त तुम्हारे साइकिल के पैडल की बात मैं बिल्कुल भी ना कर रही। तुम जो है जरा वही मारने में व्यस्त रहो, हम जो है पैडल का गेम देख कर आए। कलकत्तर की एक बात मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है कि यहाँ स्पोर्ट्स कैलेंडर हमें कभी बोर होने ही नहीं देता। हमने फुटबॉल देखा, टेनिस देखा, मोटर स्पोर्ट देखा एंड अब बारी आ चुकी है पैडल वर्ल्ड कप की। ठीक सुना आपने, आई एम टॉकिंग अबाउट FIP वर्ल्ड कप कतर 2026 व्हिच इज गोइंग टू बी हेल्ड फ्रॉम नवंबर 2nd अंटिल 7th एट खलीफा इंटरनेशनल टेनिस एंड स्क्वाश कॉम्प्लेक्स। एंड सबसे खास बात, इसमें 16 मेंस और 16 वुमेन्स नेशनल टीम्स वर्ल्ड टाइटल के लिए कम्पीट करने वाली। अगर आपको लगे यार अंशु साइकिल का पैडल तो हमने बहुत मार लिया, अगर पैडल स्पोर्ट की भी बात कर रही हो तो क्या ही प्रॉब्लम है, टेनिस ही तो है, बस कोर्ट जरा छोटा है। बेटा एक बार जरा खेलने तो चलो, उसके बाद पता चलेगा कि बॉल जो है वो वॉल से आ रही कि सामने से आ रही है, अरे पीछे से आ रही है भाई, जहां से भी आ रही है लेकिन हमारी सांसें जो है ना ये कहीं और जा रही है। चलिए जरा एक्सपर्ट्स के लिए स्पोर्ट को छोड़ देते हैं, आप और हम मिलकर बैठ कर इस गेम को एंजॉय करते हैं। क्या कहती पब्लिक, स्टेडियम टू मिर्ची बंदी का नाम अंशु।

0: only on 89.6 Mirchi One. It's hot. Mirchi, fresh maal.
1: मोहब्बत के हर रंग का एहसास, ये प्रेम मोल लिया।

इस गाने को गाया है श्रेया घोषाल और निहाल तौरो ने, म्यूजिक दिया है हिमेश रेशमिया ने और लिरिक्स लिखे हैं कुमार ने। सुनते रहिए ये प्रेम मोल लिया, टाइटल ट्रैक ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

यार सच कह रही हूँ, द मोमेंट मुझे पता चला कि ऐसा कोई कंपटीशन हो रहा है, मेरे दिल से पहला रिएक्शन बस यही निकला, अरे भाई साहब इस चैंपियनशिप में तो मेरी मम्मी को पार्टिसिपेट करना चाहिए था। मिर्ची अंशु अजी पावर स्लैप जैसे कंपटीशन की बात हो और उनमें मम्मियों का नाम ना आए तो बताएं किसका ही आए। बिल्कुल ठीक सुना आपने। वाले इस वक्त अगर मैं दोहा को देखने की कोशिश करूं, सो 19th ऑफ नवंबर इज गोइंग टू बी इंडीड वेरी एक्साइटिंग बिकॉज पावर स्लैप 27 इज फाइनली कमिंग टू दोहा। अली बिन हमद अल अतिया अरीना में अच्छे अच्छे लोगों को आप झापड़ खाते हुए देखेंगे, नो पापड़ की तरह। वेल ये जो कॉम्पिटिशन है ये पूरी तरह से प्रोफेशनल स्केल पे होस्ट किया जाता है एंड कम्पेटिटर्स लिटरली फेस टू फेस खड़े होकर एक दूसरे को थप्पड़ मारते हुए नजर आते हैं। Now this is an actual regulated sport. Well, इतना ही मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसा कोई कंपटीशन हो तो क्या आपके दिल में मेरे दिल की तरह ख्याल आता है कि इंडियन मॉम्स को यहाँ पे एंट्री मिल सकती है क्या? क्योंकि हमारे बचपन में तो पावर स्लैप के लिए ना अरीना चाहिए था, ना कोई रेफरी, ना कोई चैंपियनशिप टाइटल, बस मम्मी को जरा सा छेड़ना था या रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स जो है वो थोड़े कम लाने थे एंड उसके बाद देखो इसका सिलसिला क्या पावर पैक तरह से हमारी जिंदगी में शुरू हुआ करता था। क्या आपने खाया झापड़ पापड़ की तरह? 5001896 waiting for your messages. Instagram मिर्ची वन कतरिया मिर्ची अंशु। Meanwhile you all stay tuned to मिर्ची बंदी का नाम अंशु। Enjoy।

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
1: हेलो,
2: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोल रहे
2: हैं राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
2: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
1: लेकिन है किस लिए, ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
2: नहीं,
1: है?
2: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं, हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
1: तो,
2: हाँ वही वही वही मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी नहीं नहीं पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
1: बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास?
2: नहीं नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
1: ये कॉपी मुझे भी भेजना
2: राज जी, एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
1: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेजूंगा।
2: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। अब थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहे तो?
1: हाँ बिल्कुल बताइए।
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
1: कुकड़ों को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: मिर्ची पर इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस।
5: हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर समीन समीद, आई एम साइकियाट्रिस्ट एट नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर। आई एम हियर टू टॉक अबाउट टेकिंग केयर ऑफ अवर मेंटल हेल्थ। चेक इन टुडे, यू कैन चेक इन ऑन समवन यू केयर अबाउट। अ सिंपल हाउ आर यू रियली डूइंग कैन मीन अ लॉट। यू डोंट नीड टू हैव ऑल द आंसर्स। Sometimes listening without judgment and simply being there is absolutely enough. And finally, always seek help when in need.
6: Take care of your mind. It matters.
7: Huh? Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
8: Yes, Bebo.
7: Sirf 25% pay karke gold price lock kar sakti hu?
8: Yes.
7: Catch kya hai?
8: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free cash vouchers. Aur sirf 25% pay karke gold rate ko block kar do.
7: I still can't believe it. No catch.
8: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar gold and diamonds.
9: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
4: GWM के मिर्ची रिचार्ज में DMIS स्कूल में बच्चों ने किया फन। लेट्स हियर इट फ्रॉम देम।
10: इट वाज द बेस्ट। आई लाइक द मैजिक शो।
11: मैजिक शो एंड यू?
10: इट वाज वेरी नाइस।
11: यू लाइक्ड इट?
10: यस।
11: वी शुड कम अगेन?
10: यस।
11: व्हाट्स योर नेम?
10: आयरा।
11: एंड योर्स?
10: अनविता।
11: व्हाट वाज द बेस्ट?
10: द मैजिक शो।
12: दिस रिचार्ज इज सो कूल, बेटर देन एनीथिंग एल्स।
13: थैंक यू मिर्ची, थैंक यू GWM, वी एंजॉयड इट्स हॉट।
14: Who that?
15: जाहिर।
14: जाहिर? जाहिर हूँ।
15: जाहिर सी बात है, मैं ही हूँ और कोई नहीं।
14: खटखट, who that?
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: भाई साहब, सच कह रही हूँ, ये जो खबर है ना, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है।
1: मिर्ची अंशु।
0: देखो, जितनी कॉम्प्लिकेटेड है उतनी ही विन विन वाली सिचुएशन भी है। अगर 2036 ओलंपिक्स को होस्ट करने की रेस में दुनिया की कंट्रीज की बात करें तो जहां पे नाम है जर्मनी का, हंगरी का, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ अफ्रीका एंड टर्की का, वहीं दूसरी तरफ दो ऐसे नाम हैं जो हमारी दिल और धड़कन दोनों ही बने हुए। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट भारत एंड कतर, यानी कि इंडिया एंड कतर। एंड नवम्बर में ये सात नेशंस अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी के आगे सारा का सारा डिटेल पेश करने वाले हैं। हालांकि बात यह है, फाइनल रिजल्ट की बात करें, इलेक्शन की बात करें, ये कौन सा देश है जो ओलंपिक्स 2036 को होस्ट करेगा, ये तो हमें 2029 पे ही पता चलेगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन सच कहूं, चाहे भारत या कतर में से किसी भी देश को मिले, जीत जो है अपनी ही है, क्योंकि एक हमारी जन्मभूमि एंड दूसरी हमारी कर्मभूमि। लेकिन अगर कतर की बात करें, भाई साहब, जिस हिसाब से फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट किया है, उसके बाद इमेजिन करो अगर ओलंपिक्स भी कतर में आ जाए, क्या गजब जो है कारनामा हो ही जाएगा। एंड इसके अलावा 2030 में फाइनली एशियन गेम्स भी एक बार कतर में वापस आ ही रहा है, तो बढ़िया है जी, हम तो यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर भारत में होता है तो वहां पर भी मौजूद हो ही जाएंगे। आपके हिसाब से वो कौन सा देश है जो 2036 का ओलंपिक्स होस्ट करेगा, ये आपको लगता है? बताओ जल्दी। 5000 1896 वेटिंग फॉर योर मैसेजेस। इंस्टाग्राम @mirchi1qatar या @mirchianshu। मीनवाइल, यू ऑल स्टेडी टू मिर्ची, इट्स हॉट।
2: Authentic, original, and better than our rivals.

0: इशारे तेरे।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स पर आपका स्वागत है आफरीन के साथ, एंड इट इज टाइम कि हम जरा गोल्ड रेट्स पर आज नजर डालें। वेल, आज के गोल्ड रेट्स ये कहते हैं दैट पैम्प 1 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 568 का 3 रियाल, पैम्प 5 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 2661 का 3 रियाल, पैम्प 10 ग्राम गोल्ड बार इज फॉर 5252 का 3 रियाल, वेर एज 1 ounce गोल्ड बार इज फॉर 16234 का 3 रियाल, एंड 10 तोला गोल्ड बार इज फॉर 60264 का 3 रियाल। मैं हूँ आफरीन आपके साथ, इट्स ब्यूटीफुल मॉर्निंग राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardan Exchange, PAM's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAM gold bars
3: and earn Qatar Airways Avios today.
2: Visit our branches or download the app now.

किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला के छाती के कह देना आई लव यू, छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

0: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal. Only on Mirchi. It's hot.
1: भूमि पेडनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
2: In our school, toilet used to be the place जहाँ पे सब जाके रोमांस करते थे. That used to be the spot in my school.
3: स्कूल था, कंजर खाना खुला हुआ था.
2: दोनों.
1: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा. नहीं, आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
0: बॉलीवुड बोर्डल. बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोर्डल. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे.
5: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी.
6: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी.
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: यार एक काम करते हैं, इनसे जरा कुछ सीख लेते हैं और जरा कुछ सिखा भी आते हैं।
1: मिर्ची अंशु,
0: क्योंकि बात इतनी है कि सिर्फ सीख के बिना कुछ सिखाए हम आ जाए, अरे ना, ये तो हमसे ना हो पाएगा। यार अगर अपनी जनरेशन यानी कि मिलेनियल्स की बात करें तो हम सबकी जिंदगी में ना एक ट्रेंड बड़ा ही कॉमन है, और वो ट्रेंड है हमारे कबर्ड में रखा हुआ अच्छा कपड़ा। बचपन की वो टी शर्ट याद है जिसे आप बिल्कुल भी घर पे नहीं पहन सकते थे, क्यों? अरे ये बाहर का है, अच्छा कपड़ा है। वो जूता याद है? अरे नाना इसे अभी नहीं पहन सकते, खराब हो जाएगा, बाहर का है। वो नया डिनर सेट घर पे क्यों निकाला? अरे जब मेहमान आएंगे उनके लिए, अंदर रखो, नया है ये। वो नई बेडशीट, अरे रूटीन में क्यों बिछा रहे हो, इन्हें बिछाना है तो दिवालिया ईद में बिछाई जाएगी, अंदर रख के आओ। यार कभी कभी वो स्पेशल ओकेजन आते आते हम जो है कपड़ों से बड़े हो गए और मेहमान जो है बिना आए यूं ही रह गए। लेकिन अगर आज की जनरेशन या जेंजीज को देखने की कोशिश करें तो इनसे कुछ तो है जो जरूर सीखा है। भाई आज कपड़े खरीदे, शाम तक वो कपड़ा जो है पहन लेना है और रात तक धुलने भी ये चला जाना है। खरीदा क्यों है, जिंदगी आज है, इसी पल जीने के लिए। एंड ये बात जो है ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जब से अडॉप्ट किया है। सही कह रही हूँ, अच्छा कपड़ा जो है हर दिन लाइफ में शामिल होने लगा है। लेकिन जेंजीज की एक बात जो मुझे समझ नहीं आती कि कपड़ा रिपीट क्यों करना है। अरे भैया खरीदा इसलिए क्योंकि पसंद है ना, पसंद है, रिपीट करो, कुछ तो सस्टेनेबल बनो। क्या कहती पब्लिक? स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, बंदी का नाम अंशु, एंजॉय।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: एक नया हफ्ता, एक नया मिर्ची टॉप 20, और जैसे हर हफ्ते होता है, अगले कुछ मिनटों में हम गाने सुनेंगे, कहानियां सुनेंगे, कुछ पुराने गाने नए तरीके से सुनेंगे, और कुछ नए गाने शायद आपकी प्लेलिस्ट का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन इस हफ्ते दिल में एक दर्द है, सिर्फ नाना पाटेकर के जाने का दर्द नहीं, उससे भी ज्यादा जो हो सकता था उसके खत्म हो जाने का दर्द। क्योंकि कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में लगता है कि इनको और मिलना चाहिए था, बहुत ज्यादा मिलना चाहिए था। मेरे लिए नाना पाटेकर, इरफान खान, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी जैसे उन चंद लेजेंडरी एक्टर्स में से थे जिनके सामने ये शब्द स्टार थोड़ा छोटा पड़ जाता है। नाना की एक्टिंग, उनका क्राफ्ट, और हमने उनसे क्या पाया और क्या शायद कभी पा नहीं पाएंगे, इस बारे में मैं आज मिर्ची टॉप 20 पे आपसे एक बात करना चाहता हूं। लेकिन फिलहाल मिर्ची टॉप 20 वही है, मैं भी वही सुरेन सुंदरम हूं, गाने वही हैं, सफर नया है, और शुरुआत कर रहे हैं वे तुमियो बंधु 2.0 फ्रॉम कॉकटेल 2, जो है इस हफ्ते नंबर 20 पर। लेकिन अब हम सीधा जाने वाले हैं जंगल की तरफ, फ्रॉम द मूवी 1, दिस इज ठुमक ठुमक ऑन नंबर 19।
2: नंबर 19।

0: शरारत का अपना एक अलग मैडनेस है। लेकिन इस गाने के बाद एक ऐसी एक्ट्रेस की बात करनी है जिसका करियर मुझे बॉलीवुड की एक अजीब सी प्रॉब्लम याद दिला रहा है। यामी गौतम को स्टार बनने से ज्यादा एक्टर बनना पसंद था। पिछले 5 सालों को देखिए, 10वीं, अ थर्सडे, चोर निकल के भागा, ओ माई गॉड 2, उसके बाद आर्टिकल 370, जहां उन्होंने एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल अदा किया, और उसके बाद आया वो नेशनल अवार्ड जहां पे हक में वो बनी शाजिया बानो बेगम। हर फिल्म में एक नई यामी दिखी, और अब नई नवेली में एक ऐसी औरत जिसके बारे में ट्रेलर खुद सवाल पूछ रहा है, क्या ये बहू है या डायन? लेकिन यामी के लिए असली गेम कुछ और ही है। इस इंडस्ट्री में एक एक्टर होने के साथ साथ एक अलग परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, स्टार होने की परफॉर्मेंस, विच मींस पीआर, पैपराज़ी, लुक पिक्चर्स, परसेप्शन, और यामी उस गेम को लेकर बिल्कुल क्लियर है।
1: In today's time, there is your PR, your paparazzi, your reviews, you have fans, you're getting mobbed, you're this. I can't do that. क्योंकि ऑडियंस को नहीं फर्क पड़ता है, उनको अच्छी फिल्म देखनी है, उनको अच्छा काम देखना है, वो वही देखेंगे उनको जो देखना है। तो आप ये perception किसके लिए create कर रहे हो? If I'm putting my heart and soul in a film, मैं अगर मैंने अच्छा काम किया अगर तो आप लिखेंगे उसके बारे में, मैं आपको बोलूँ नहीं आप ना और लिखो आप, और इवन इफ यू डोंट लाइक इट डजंट मैटर बट यू राइट इट, आई वोंट फील कंफर्टेबल विद दैट, इट शुड कम फ्रॉम यू, आई कांट डू दीज थिंग्स बिकॉज दे आर नॉट मी।
0: शायद इसलिए यामी की फिल्मोग्राफी इतनी इंटरेस्टिंग है, वो हमें अपनी सेलिब्रिटी लाइफ नहीं बेच रही है, वो हमें अपना काम दिखा रही है, और अब उस काम का एक बिल्कुल अलग रंग। नई नवेली से नीति मोहन की आवाज में दिस इज भाभी तबाही, डेब्यूइंग ऑन नंबर 17।
2: Number 17.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो
3: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहा हूँ। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
2: मोबाइल
3: ये सर आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
2: क्या रिपोर्ट आ गई है?
3: यही क्या, ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कम्प्लेट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
2: मोबाइल चोरी हो गया?
3: हाँ जी। भाई साहब हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
2: हाँ पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
3: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है इस नंबर से, गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
2: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
3: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
2: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
3: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
2: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
3: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
2: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
3: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
2: हाँ जी सर।
3: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
2: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
4: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
2: कुकड़ों को
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
1: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन
8: 89.6
1: FM मिर्ची 1 इट्स हॉट।
0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
9: नंबर 16।

ये आवारापन, अरिजीत सिंह की आवाज में नया गाना लेकिन दर्द पुराना। और शायद इस वक्त एक अजीब सा सवाल भी है, क्योंकि इसी साल जनवरी में जब अरिजीत ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट अनाउंस किया था, तो लगा था कि यार एक आवाज बॉलीवुड से धीरे धीरे दूर जा रही है। लेकिन फिर 20 साल पूरे होने की खुशी में अरिजीत ने कहा, मिलते हैं इंडिया के 9 शहरों में। ये एक फेयरवेल नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन है। पिछले 2 सालों में सच नहीं जमाना लगे, धुन तेरे इश्क में गहरा हुआ, और अब ये आवारापन। जैसे प्लेबैक से पीछे हटने से पहले भी अरिजीत कह रहा हो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है।

लेकिन 20 सालों की कहानी में एक पल ऐसा भी है जब सारी परतें हटा दो, सारी चीजें हटा दो, प्रोडक्शन नहीं, ऑर्केस्ट्रा नहीं, बस आवाज, अरिजीत की आवाज।

इतने सालों में हमने अरिजीत को हजार कहानियों की आवाज के रूप में सुना है, लेकिन अब वो उन कहानियों के कैरेक्टर्स के पीछे नहीं होगा, बस अरिजीत होगा। और फिर वापस चलेंगे उस गाने तक जहां से उनकी कहानी ने एक अजीब सा मोड़ लिया था। फिर ले आया दिल, प्रीतम दा को पहले यकीन नहीं था वैसे अरिजीत ने इसका स्क्रैच गाया था रेफरेंस के रूप में, लेकिन अनुराग बासु के कानों पे जब वो स्क्रैच पड़ा तो उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा कि यार ये आवाज तो चाहिए। और कभी कभी कुछ जादुई करियर्स ऐसे ही शुरू होते हैं। आप किसी और के लिए गाना रिकॉर्ड करते हो और दुनिया आपको सुन लेती है। 20 साल बाद वही आवाज अपना पूरा सफर खुद गा रही है। मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग ऑफ द वीक, फिर ले आया दिल, मजबूर क्या कीजिए।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून
2: Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
3: Yes, Bebo.
2: सिर्फ 25% pay करके gold price lock कर सकती हूँ?
3: Yes.
2: Catch क्या है?
3: मलाबार gold and diamonds के साथ celebrations को और भी खास बनाओ. Diamond और precious gem jewelry purchases पर पाओ free cash vouchers. और सिर्फ 25% pay करके gold rate को block कर दो.
2: I still can't believe it. No catch.
3: Catches सिर्फ matches में होते हैं, Bebo. This is your festive gift from Malabar.

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: Hi, this is Akshay Kumar.
2: नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन।
3: Hi, everybody, मैं हूँ शाहरुख खान।
4: Hi, this is सलमान खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस समोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: Number 14.

0: तबाही में विशाल मिश्रा की आवाज मोहब्बत के टूटने का एहसास देती है, लेकिन मुंबई ने एक और तबाही देखी थी जिसे हमने कभी सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं देखा। 26 नवंबर 2008 हम में से बहुत लोगों को आज भी याद है कि उस रात हम कहां थे, लेकिन किसी भी हादसे के बाद एक और जगह होती है जहां उस सच को याद रखना पड़ता है, अदालत में। प्रहार उस रात को फिर से दिखाने से ज्यादा उस रात के बाद की लड़ाई की कहानी है। उज्जवल निकम, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए सवाल सिर्फ ये नहीं था कि उस रात क्या हुआ, सवाल ये था कि जो हुआ उसे अदालत के सामने साबित कैसे किया जाए। और शायद इसलिए राजकुमार राव के लिए भी ये किरदार निभाना सिर्फ एक रियल इंसान को पर्दे पर उतारना नहीं था।
1: तो जिम्मेदारी थी कि किस तरह से हम उनकी जिंदगी को पर्दे पर उतार रहे हैं, उन सच्चाइयों को कहानी के रूप में लोगों के सामने ला रहे हैं, तो उस सच्चाई को भी मेंटेन रखना, उनकी जिंदगी को, उनके तौर तरीके को, उनके बोलने के तरीके को कैसे मैं अपना पाऊं कि लोग जब देखें स्क्रीन पर तो वो राज को ना देखें, वो उज्जवल निकम जी को देखें। तो उसके लिए मेहनत थी, ऑफकोर्स मेहनत तो होती है जब एक डराने वाला काम होता है कि ये मुझसे इतना अलग दिखते हैं, बोलते हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा, पर जहां डर होता है वहां मजा भी आता है।
0: राजकुमार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है, स्क्रीन पर राजकुमार राव नहीं उज्जवल निकम दिखाई दे। और यहीं प्रहार की कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। मुंबई ने 26/11 को अपने दिल पर झेला था, उज्जवल निकम को उस दर्द को सबूतों में बदलना था। कसाब की उम्र को लेकर अदालत में जो सवाल खड़े किए गए वो भी इसी लड़ाई का एक हिस्सा था, क्या कहा जा रहा है और सच क्या है। और ऐसी कहानी को म्यूजिक भी शोर से नहीं ठहराव से बोलना चाहिए। विशाल मिश्रा की आवाज और उन्हीं की कॉम्पोजिशन, अमिताभ भट्टाचार्य के अल्फाज, प्रहार से मेरे रहते, डेब्यूइंग ऑन नंबर 13।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: अर्शद वार से आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम चल रहा है, चाहे ओटीटी की बात हो या थिएटर की। प्रीतम और पेड्रो में आपने राजकुमार हिरानी से अच्छे खासे पैसे मांगे होंगे, नहीं?
4: पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए। वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है।
5: पिक्चर बिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा।
6: उनकी दो एक सीरीज एक फिल्म, मैं ही हूं जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूं।
3: राजकुमार हिरानी में एवरीवन बी एज एन एम्प्लॉयड एज यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स ऑल
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
7: Looking to grow your business in Qatar's booming hospitality and food industry? Then don't miss Hospitality Qatar 2026, the region's leading platform for hospitality, food service and tourism. Meet key decision makers, investors and industry professionals. Showcase your latest products and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.
8: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
9: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
10: बहुत कुछ होगा।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
12: 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट।
0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
13: नंबर 12।
14: ये चांद तारे लाके तुम्हारे कमरे की छत पे मैं सजा दूं।

कुछ सिंगर्स की आवाज में एक अजीब सी चीज होती है, आप गाना भूल सकते हो लेकिन आवाज नहीं। आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं आपको गाने के बोल नहीं सुनाऊंगा, नो लिरिक्स, नो बीट्स, नो म्यूजिक, सिर्फ वो आवाज, और देखते हैं कितने सिंगर्स आप बिना गाना सुने पहचान पाते हैं।

सुर के साथ वो हल्का सा गहरापन, जैसे आवाज पर सफर की धूल जमी हो। मोहित चौहान, अब एक बिल्कुल दूसरी दुनिया।

0: नीचे से उठती हुई रेजोनेंस, ऊपर जाकर खुलने वाली आवाज, अदनान सामी, आपने कितने पहचाने? और अगर सारे पहचान लिए तो आपने अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की है कि इन आवाजों का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। किसी में हवा है, किसी में एक ब्राइटनेस, किसी में वो रेजोनेंस, लेकिन हर आवाज के पास अपना फिंगरप्रिंट है। और फिर आज की जेनरेशन में एक आवाज, जुबिन नौटियाल। जुबिन की आवाज में एक खास ठहराव है, नोट को पकड़कर रखने का, उसके अंदर थोड़ा सा दर्द छोड़ने का। और जब वही आवाज समझो ना में आती है तो गाना सिर्फ मेलोडी नहीं रहता, उसकी एक शक्ल बन जाती है। शायद प्लेबैक सिंगिंग का असली कमाल यही है। सुर सीखा जा सकता है, रेंज बढ़ाई जा सकती है, टेक्निक पॉलिश की जा सकती है, लेकिन वो आवाज जिसे 2 सेकंड सुनते ही आप कह दें ये कौन है, वो पहचान बनाई नहीं जाती, वो आवाज के साथ पैदा होती है। जुबिन नौटियाल की आवाज में फ्रॉम द मूवी 1, नंबर 11 पर, इसे समझो ना।
1: नंबर 11।

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: Number 10.

0: आजकल हर फिल्म मेकर, हर आर्टिस्ट वाइब ही तो चेस कर रहा है, द कूल वाइब, द रेलेवेंट वाइब, द इंस्टाग्राम वाइब। लेकिन एक वाइब ऐसी है जिससे हर आर्टिस्ट डरता है, इररेलेवेंट होने की वाइब। एंड मे बी दैट्स व्हाई बॉलीवुड का एक ईरा ऑफिशियली खत्म होने वाला है, कॉफी विद करण। 22 साल, 150 से ज्यादा एपिसोड्स, बॉलीवुड के स्टार्स, उनकी गॉसिप, उनकी कंट्रोवर्सीज, उनके सीक्रेट्स। शो कोई वैसे पाथ ब्रेकिंग टेलीविजन नहीं था, लेकिन करण जौहर ने बॉलीवुड मसाला गॉसिप को मानो जैसे संजय लीला भंसाली के फिल्म की तरह पैकेज कर दिया। प्रीमियम सोफा, डिजाइनर लाइट्स, एक्सपेंसिव गेस्ट, शैंपेन, रैपिड फायर राउंड, और बीच में वो सवाल जो अगले दिन पूरा बॉलीवुड एंड देश डिस्कस करता था। नेपोटिज्म जैसे वर्ड्स हमारी एवरीडे वोकैबुलरी का हिस्सा बन गए, और अब करण कह रहे हैं बस हो गया। लेकिन उनकी एक बात शायद इस पूरी कहानी की बेस्ट समरी है।
1: आप मुझे नफरत दो, आप मुझे मोहब्बत दे दो, जस्ट डोंट गिव मी इररेलेवेंस। आई डोंट वांट टू बी इररेलेवेंट, आई ऑलवेज वांट टू बी रेलेवेंट। आई डोंट माइंड योर हेट, एज लॉन्ग एज आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं, बहुत जरूरी है। नफरत छिड़क छिड़क दो, मोहब्बत छिड़क दो, बस डोंट इग्नोर मी। बिल्कुल मुझे फेलियर का खौफ नहीं है। अगर आप मैंने फ्लॉप फिल्म बनाई है, स्टिल यू मस्ट टॉक अबाउट, ताकि आई मैटर टू दैट एक्सटेंट कि आपने अगर मैंने बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस डिजास्टर दी है तो आप प्लीज इसका जिक्र करो, बात देखो कि क्या हुआ, क्यों बनाई, क्या हो गया, दिस हैपेंड, दैट हैपेंड, जस्ट डोंट नॉट टॉक अबाउट इट। क्योंकि इररेलेवेंस क्या है, खामोशी क्या है, इट्स द वर्स्ट फीलिंग फॉर एन आर्टिस्ट कि आप, मैं इतना इररेलेवेंट हूँ कि आपने जिक्र भी नहीं किया फॉर माई शॉर्ट ऑफ माई शॉर्ट कमिंग्स और माई फेलियर्स, एंड देयर इज नथिंग वर्स फॉर एन आर्टिस्ट इन दैट।
0: फेलियर से नहीं, साइलेंस से डर लगता है। और अब 22 साल की बॉलीवुड कॉन्वर्सेशन के बाद एक नई जनरेशन अपनी पुरानी कहानियों को नए तरीके से सुना रही है। स्कूल, पहला क्रश, दोस्त, वो पुराने दिन। सुनने में वैसे करण जौहर की दुनिया लगती है, लेकिन ये लव रंजन की सिनेमैटिक यूनिवर्स है। अरिजीत सिंह, कुमार एंड रोचक कोहली, द टीम दैट गेव अस तेरा यार हूं मैं, वेल दे आर बैक एंड दिस सॉन्ग इज कॉल्ड पुराने दिन एंड इट डेब्यूज ऑन नंबर 9।
2: नंबर 9।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो मिस्टर गगन वेरी गुड इवनिंग बैंक से बोल रहा हूँ आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको आपका अकाउंट नंबर 337103 राइट वन सेकेंड सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000 वन सेकेंड सर आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने
2: नहीं तो
1: आपने नहीं किया है
2: नहीं
1: तो फिर किसने किया है सर ये सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से
2: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ
1: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हमारी सर्विस देखिए कम से कम मुझे पता चला मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले किसने निकाला किस पे शक है आपको
2: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना कुछ को चेक दिया है ना मैंने एटीएम यूज किया है
1: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से
2: मैंने 2 पैसे निकाले
1: तो फिर ये किसने निकाला है यार
2: मैंने कोई पैसा निकाला ना मैं किसी को चेक दिया एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल ओके
1: सर वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं लेके मत जाओ हम दे देते हैं ना आपको मुझे क्या पता कौन लेके गया सर
2: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पे मेरा नाम लिखा है
1: आपका नाम से क्या होता है यार मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल लिए हैं मुझे नहीं पता आप
2: ठीक बोल रहे हो
1: आप मुझे क्या बताए आप बदतमीजी से बात मत करिए
2: सबको लगा दूंगा लाइन में
1: सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं सर ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे 15 तारीख को आप नहाए थे आपने मांग निकाली है
2: क्या
1: मांग निकाली है आपने आप क्या क्या निकालते रहते हो यार
2: किससे बात करनी है किस बैंक से बोल रहे हो तुम
3: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है आप रेडियो मिर्ची पे हैं आपका मुर्गा बन गया है 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं आपके अकाउंट में 1,42,000 रुपए हैं और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था
1: लेकिन सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है आपने भड़ास भी निकाली है नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची
5: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी सीरियसली माही
6: यस बेबो
5: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ
6: यस
5: कैच क्या है
6: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो
5: आई स्टिल कांट बिलीव इट नो कैच
6: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स
7: Our business is our business, none of your business.
8: पर दीदी, our entertainment is your entertainment.
9: Qatar का number one radio station.
10: 89.6
11: FM, Mirchi 1. It's hot.
0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 7
12: जगत के

0: रामायण दिवाली पर आ रही है और साल के आखिर में 3 साल का एक और इंतजार खत्म होने वाला है, पठान जवान एंड डनकी ऑल इन 2023 एंड नाउ आफ्टर 3 इयर्स शाहरुख खान इज कमिंग बैक विद किंग। सिनेमा वैसे बदल गया है, शाहरुख खान भी बदल गए हैं। अब वो स्क्रीन पर मोहब्बत का इजहार करने से पहले दुनिया से लड़ते हैं, हाथ में बंदूक होती है, आंखों में गुस्सा और हर कदम के साथ एक नया एक्शन अवतार। लेकिन फिर कैमरा धीरे धीरे उनके चेहरे के करीब आता है और एक पल के लिए सारी आवाजें खामोश हो जाती है, हम बेबस हो जाते हैं। चाहे शाहरुख खान कितनी भी एक्शन फिल्म्स कर लें, चाहे कितने भी पंचेस मार लें, कितनी भी बार दुनिया को बचा लें, उस चेहरे को देखते ही हम किसी और ही वक्त में पहुंच जाते हैं। एक ऐसा वक्त जब शाहरुख के हाथ में बंदूक नहीं एक गुलाब होता था, जब उनकी आंखों में बदले की आग नहीं इंतजार की नमी होती थी, जब वो दुनिया से लड़ते नहीं थे सिर्फ एक दिल जीतने के लिए पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े हो जाते थे। DDLJ, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, वीर ज़ारा, हर फिल्म में शाहरुख खान का एक नया रंग था। हमने वो फिल्म्स पीछे छोड़ दी हैं, शाहरुख खान ने भी पीछे छोड़ दी हैं, लेकिन हमारा दिल वो अब भी वहीं अटका हुआ है। आज जब वो स्क्रीन पर किसी विलन को गिराते हैं तो थिएटर तालियों से गूंज उठता है, लेकिन जब वो बस मुस्कुराते हैं या आंखों से कुछ कह देते हैं तो हमारे अंदर का वो पुराना सिनेमा जाग उठता है। एक्शन काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उनकी रोमांटिक फिल्म्स की याद अब भी जिंदा है, एक पुरानी तस्वीर की तरह जो वक्त के साथ धुंधली तो पड़ जाती है मगर कभी मिटती नहीं। शायद इसलिए आंखों से तूने ये क्या कह दिया जैसा गाना एक गाना नहीं है, वो एक दरवाजा है टू दैट ईरा वेयर शाहरुख खान वाज द किंग ऑफ रोमांस, जहां बारिश अब भी हो रही है, जहां कोई ट्रेन अभी छूटी नहीं है, जहां एक लड़का अभी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है पर एक लड़की के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है। और उस वक्त की एक धुन हमें फिर से सुनाई देती है, कभी खुशी कभी गम, संदेश शांडिल्या, सोनू निगम एंड अलका याग्निक। मेरा रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक, सूरज हुआ मध्यम।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही. मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून.
2: कटकट
3: अबे कौन है?
2: उत्तपा.
3: उत्तपा कौन?
2: उत्तपा में दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
3: खटखट हो दा.
4: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1. इट्स हॉट.
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 5.

0: अफसाना बनाया आपने। 21 साल बाद भी हिमेश की आवाज आती है और बिना किसी इंट्रोडक्शन के आपको पता चल जाता है कि दिस इज हिमेश रेशमिया। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, हिमेश का गाना गाना इज अ वाइब। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिमेश रेशमिया ने सिंगर बनने का प्लान बनाया ही नहीं था। 2005 में जब आशिक बनाया आपने आई थी तो उसका गाना ओरिजिनली मिक्का पाजी को गाना था, दैट्स व्हाट द थॉट वाज। लेकिन मिक्का पाजी थे लंदन में। इसके बाद क्या हुआ ये बताएंगे आशिक बनाया आपने के लिरिसिस्ट, उसके राइटर समीर साहब।
1: मिक्का ने फोन किया कि सर अभी आप डमी आवाज कर लो, मैं आऊंगा तो गा दूंगा। अब डमी आवाज कहाँ ढूंढने जाए, अब उस वक्त मुश्किल था कि जिसे गवा लो फिर सिंगर कोई बड़ा गा, और नया सिंगर वो गाने को जस्टिफाई कर नहीं पा रहा था। तो हिमेश ने बोला कि यार एक काम करता हूँ, मैं गा के दे देता हूँ, जो आएगा मिक्का तो गा के दिया। वो गाना जब शूट होने लगा तो इमरान हाशमी को सबको लगा कि नहीं यार ये मज़ा आ रहा है, कुछ अलग आवाज़ है, अब इसी को रखो, हटाओ मिक्का को नहीं डालेंगे। उस चक्कर में गाना चला गया। अब वो गाना हो गया इतना बड़ा हिट कि अब वहाँ से फिर हिमेश का अपना वो गाने का खुद का गा के वीडियो बना, क्या क्या हुआ, इट वॉज लक बाई चांस वो मौका मिल गया।
0: बस यार एक टेम्प्ररी आवाज परमानेंट हो गई। गाना रिलीज हुआ, आशिक बनाया आपने ने धमाका किया और जिस आवाज पर लोग बोलते थे ये तो नाक से गाता है, हिमेश ने उसी आवाज को अपनी पहचान बना दी। 21 साल हो गए हैं आज हिमेश पहले जितना नहीं गाते, लेकिन जब भी गाते हैं आवाज नहीं आती, हिमेश नाम का तूफान आता है। इस हफ्ते वारू फॉरएवर फ्रॉम मिर्जापुर नंबर 4 पर है और नंबर 3 पर है ये प्रेम मोल लिया का टाइटल ट्रैक कंपोज्ड बाय हिमेश रेशमिया हिमसेल्फ। लेकिन मेरा सबसे फेवरेट हिमेश रेशमिया सॉन्ग वो गाना है जहां उन्होंने हिट मशीन बनने के बजाय एक मूड क्रिएट किया था, एक हिप्नोटिक ग्रूव, अ डार्क साउंडस्केप और एक आवाज जो जैसे रात में तैरती है, लुट जाऊं लुट जाऊं लुट जाऊं मैं, फ्रॉम द साउंडट्रैक ऑफ कर्ज़।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: हुमा कुरैशी, आपका जो किरदार है बेबी डू डाई डू में, उसे महाराष्ट्र बनाने की कोई खास वजह थी?
4: नचिकेत सर आए, उन्होंने पढ़ी एंड देन एट सम पॉइंट नो आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज ही इज अ महाराष्ट्रियन बॉय। आई थॉट माय डायरेक्टर विल बी वेरी हैप्पी, कह रहे वाह यू नो ये हमारे खेड़े की कुछ वो करना चाहती है, बट आई थिंक वो डिसअपॉइंट हो गए कि ये नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने बोला कि तुम महाराष्ट्र नहीं हो पिक्चर में, मगर तुम बोल नहीं सकते।
3: ये थी हुमा कुरैशी टॉकिंग अबाउट बेबी डू डाई डू ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda.
2: Only on Mirchi. It's hot.
5: Cut, cut.
6: कौन है?
5: इशांत.
6: इशांत कौन?
5: इशांत गदाधारी भीम इशांत.
6: Cut, cut. Who that?
7: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.
0: Only on Mirchi. It's hot.
8: Number 2.

0: इस गाने से सबको बहुत प्यार है, तेरा मेरा रिश्ता, लेकिन कुछ पल के लिए बस खामोशी रहने देते हैं, क्योंकि नाना पाटेकर के जाने की खबर को सिर्फ एक एक्टर की डेथ की तरह देखना मुझे बहुत छोटा लगता है। नाना उन एक्टर्स में से थे जिनके जाने के बाद सिर्फ उनकी याद नहीं आती, एक सवाल भी रह जाता है, हम उनसे और कितना कुछ देख सकते थे। नाना की ग्रेटनेस समझने के लिए उनकी पूरी फिल्मोग्राफी की जरूरत नहीं है। याद करते हैं परिंदा और याद करते हैं वो सीन, जैकी श्रॉफ खड़े हैं सामने, नाना को जिंदा जलाया जाने वाला है, और उस चेहरे पर डर भी है, गुस्सा भी है, और जिंदगी को पकड़ के रहने की वो बेचैनी भी।
1: पागलपन मत कर अपने भाई की तरह, नहीं तो तू भी मरेगा। मैं अपना करके तेरे से इतनी बात की, एक बार टांग मेरा, तेरा भाई था इसलिए उसको गोली मार दी, कोई दूसरा होता तो जिंदा जला देता उसको।
0: फिर आई वो कहानी जिसका नाम है खामोशी, एक आदमी जो सुन और बोल नहीं सकता, उनकी बेटी मौत से लड़ रही है और नाना सिर्फ एक नाम कहना चाहते हैं, एनी।
2: एनी
0: आवाज पूरी नहीं निकलती, लेकिन दर्द पूरा पहुंचता है, और फिर वही नाना हमें दिखे वेलकम में।
3: अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या, कहां बैठा हूं, किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, समझ में नहीं।
2: कंट्रोल कंट्रोल उदय,
0: ये आज भी सुनते हैं तो हम हंस देते हैं। तीन अलग अलग सीन्स, तीन अलग अलग दुनिया, और एक एक्टर जो हर बार अपने आप को पीछे छोड़ देता था, लेकिन नाना की कहानी का एक हिस्सा मुझे हमेशा थोड़ा उदास करेगा। शायद वो एक ऐसी इंडस्ट्री में, एक ऐसे सिनेमा में एक्टर थे जिसने उनकी पूरी काबिलियत को कभी समझा ही नहीं। उन्होंने परिंदा में जो किया उसके बाद विधु विनोद चोपड़ा ने उनके साथ फिर कभी काम नहीं किया। उन्होंने जो खामोशी में किया उसके बाद संजय लीला भंसाली के साथ वो सफर दोबारा नहीं हुआ। और कभी कभी सोचता हूं अगर उन्हें वो रोल्स मिलते, वो फिल्म मेकर्स मिलते, वो अपॉर्चुनिटीज मिलती जो उनकी एक्टिंग डिजर्व करती थी, तो क्या नाना पाटेकर की कहानी और बड़ी होती। लेकिन शायद दुनिया ने उनके लिए एक और कहानी लिखती, लोगों ने उनकी इंटेंसिटी देखी और उन्हें एक गुस्सैल आदमी समझ लिया। वो आवाज सुनी लेकिन पीछे की नरमी नहीं देखी, उनके किरदार देखे लेकिन शायद उस एक्टर की पूरी रेंज नहीं देखी, और यही नाना की कहानी का सबसे खूबसूरत और सबसे दुख भरा हिस्सा है। उन्हें जितना मिला उसे उन्होंने यादगार बना दिया, लेकिन जो नहीं मिला उसकी कमी हम आज भी महसूस कर सकते हैं। आज नाना को याद करते हुए दुख तो होता है, लेकिन उससे ज्यादा नाज होता है कि हमारे सिनेमा ने हमें नाना पाटेकर दिया, एक ऐसा एक्टर जिसके कुछ किरदार फिल्में खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रहे, हमारे साथ चले। नाना पाटेकर को दिल से सलाम। मिर्ची टॉप 20 पे द नंबर वन सॉन्ग वंस अगेन दिस वीक इज धुरंधर का गहरा हुआ। नंबर वन।

0: गहरा हुआ और ये सफर यहीं खत्म होता है। लेकिन नाना पाटेकर की एक बात दिल में रह गई। हमने उनका बहुत सारा कमाल देखा, लेकिन शायद वो सब नहीं जो वो कर सकते थे, और शायद इसी में उनकी लेगेसी का दर्द भी है और नाज भी। कुछ एक्टर्स चले जाते हैं, लेकिन उनका काम हमेशा दिल में रह जाता है। मैं हूं सुरेंद्र सुंदरम, मिलूंगा आपसे अगली बार ऑन द मिर्ची टॉप 20।
1: सुरेंद्र के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: Подумайте, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь.
3: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon. Coming soon.

0: अरे चेक वेक कर लो, डस्टिंग क्लीनिंग कर लो, अब तो इनका यूज आने वाला है। अरे यार, बीच आउटिंग, बारबेक्यू पार्टी के लिए यूज आने वाली ये सारी चीजें, यस, इनकी तैयारियां कर लो। मौसम बदलने वाला है, विंटर्स ऑफिशियली कतर में एंटर करने वाले हैं, ऐसे में हमें और आपको भी तो तैयारी करनी है उन चीजों को जिनको हमने बहुत महीनों से सजो के रखा है, उनकी डस्टिंग वस्टिंग कर लो, अब उनके इस्तेमाल की बारी आ गई।
1: #974974
0: यस, हम आपको बता दें कतर अपने कोस्टल लेजर एक्सपीरियंस को और बेहतरीन बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत करा है। स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने कतर के 18 बीचेस को सेलेक्ट किया, जिसमें से 8 को डेवलप कर दिया गया और पब्लिक के लिए ऑफिशियली वो खोल दिए गए और बाकी पर अभी भी काम चल रहा है। वेल, हम आपको बता दें कतर के मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी ने जबरदस्त काम किया है। वो चाहते हैं कि जब पब्लिक बीचेस पर जाएं तो उनको वो सारी फैसिलिटीज मिले ताकि उनके लिए बीच एक्सपीरियंस आसान और बेहतरीन हो जाए। और इसी बात को ध्यान रखते हुए कतर में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स किए गए हैं बीच पर, एंड वो आपको इस बार विंटर्स में दिखाई पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर हमारे कतर के बहुत सारे बीचेस पर आपको इस बार अलग अलग तरह की सर्विसेज और पब्लिक फैसिलिटीज एक साथ मिलेंगी, एंड हमारे और आपके बीच एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी को दिल से धन्यवाद। 18 में 8 हो गए, अभी तो 10 और बचे हैं, मतलब अब हमारी और आपकी पार्टी प्लेसेस इस पूरे विंटर्स बेहतरीन होने वाली है। 89.6 मिर्ची 1, हम तो अभी से खुश हो रहे हैं यार, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Buscabana, buscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga.
1: La vieja la burga. Mirchi, burga. Hello.
2: Could I speak to Manish, please?
1: Speaking.
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके मनीष, आई नीड योर फेवर, आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी। मैं यहाँ पे लेक्चर देता हूँ स्टूडेंट्स को। मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट, कि पहले इंसान एप था। आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में, यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया, राइट।
1: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
2: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट। एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे। इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके।
1: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ।
2: तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था। तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे, तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स के सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर। आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था। बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी। तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए, कल का रख ले। मेरी बात सुनो, आई एम प्रोफेसर, मेरी बात सुनिए यार। आप हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है।
1: हेलो,
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी, मेरी बात सुनिए, मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार। मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार। मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार। इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
5: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
3: नंबर 1 रेडियो स्टेशन 89.6 FM Mirchi 1, it's hot.
6: Uh-huh.

क्या बात है मेरे भाई, इस खबर पे तो बकलाफा, कुनाफा या फिर ओम अली सब बनती है। गौरव आपके साथ है और पूरे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के एक स्टैट की नई रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक गल्फ कंट्रीज ने 2025 में मनी ट्रांसफर यानी कि जो हम आप काम करते हैं फिर वर्कर्स रेमिटेंस जो भेजते हैं उसके सारे पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। एक दो नहीं, पूरे 161 यूएस डॉलर घर भेजे। Yes, अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन की बात करें तो 2024 में यह नंबर जो था उससे 19 बिलियन ज्यादा पैसे जीसीसी नेशन से अपने अपने रीजन में भेजे गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जीसीसी से पैसा जाने के मामले में ना ये सबसे बड़ा वर्ल्ड का रीजन बन गया है। यानी कि हम लोग जो कमाई करके अपने घर भेजे जा रहे हैं उसकी वजह से जीसीसी अब दुनिया का सबसे ज्यादा रेमिटेंस भेजने वाला और रीजन बन गया है। और ये बता रहा है कि इस बम्पर ग्रोथ की वजह यही है कि यहाँ पर बूमिंग इकोनॉमी है, जिस तरह का माहौल बना है, लोगों के लिए चीजें इजी हैं एंड लाइफस्टाइल के साथ साथ आप कुछ अच्छी लाइफ को अफोर्ड कर पाते हैं। वेल, कुल मिलाकर इतना ही कहता हूं कि ये जीडीपी का पूरा 6.6% भी कवर करता है अगर हम जीसीसी की बात करें, ये एक बहुत बड़ी चीज है। वहीं अगर कंपैरिजन करिए तो सोचिए यूएस से 107 बिलियन, स्विट्जरलैंड से 43 बिलियन, जर्मनी जैसे देश से 27 बिलियन बाहर गया, लेकिन हमारे जीसीसी ने इतिहास रच दिया है भैया। एक दो नहीं, 161 बिलियन, और इसमें कुछ हजार हमारे भी हैं इतना जरूर कहेंगे। और क्या करें, ऊपर वाला अगर थोड़ी और मेहर कर देगा तो अगली बार ये हजारों की जगह लाख हो जाएगा। फिलहाल तो मस्त वाला गौरव आपके साथ, इस कामयाबी पर तो हम सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा है, आइए इसको सेलिब्रेट करें। अगला गाना मिर्ची पर हमारी तरफ से, मिर्ची इट्स शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।
1: मोबाइल अगर बैटरी लो हो रही है तो फटाक से पावर बैंक के साथ कार में कहीं लगा के भी आप चार्ज कर सकते हो, लेकिन बाद जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है तो क्या करोगे? हाँ जी, मान लीजिए आपने ध्यान नहीं दिया, थोड़ी सी लापरवाही की और आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको दिखा रहा है बैटरी लो, फिर आप परेशान हो गए, आप बोलोगे अरे अगला वाला है कहाँ, चार्जिंग स्टेशन कहाँ, जाएं क्या करें? ऐसे में कतर अब आपके लिए चीजें आसान कर रहा है। हम आपको बता दें कतर एक्सपेंड कर रहा है अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग नेटवर्क को और साथ ही साथ डिजिटल सर्विसेज के साथ एक्सपेंड कर इसे बेहतरीन बना रहा है। इसमें एक स्मार्ट ऐप जो है वो शामिल हो जाएगा और फिर क्या है, जैसे ही आपको लगेगी आपकी कार की बैटरी आपको चार्ज करनी है, आपको सारे कतर के जितने भी ईवी चार्जिंग स्टेशन है उनकी लोकेशन मिल जाएगी। आप अवेलेबिलिटी देख सकते हो कि यहाँ पे अभी कोई और व्हीकल तो चार्ज नहीं हो रहा है, मुझे तो मिल जाएगी जगह, एंड अवेलेबिलिटी देखते ही आप वहां पहुंच जाइए, फटाक से अपना चार्जिंग मैनेज कर लीजिए। बिल्कुल मिलाकर ये कदम कतर जनरल इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कॉर्पोरेशन करामा का है, ताकि आने वाले टाइम में कतर में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिले और कतर का नेशनल विजन 2030 जो कि कार्बन इमिशन कम करने के लिए बहुत सारे मापदंड तय किए गए हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, उसको अचीव कर पाए। तो ऐसे में कतर के करामा के ईवी चार्जिंग इंजीनियर हेसा फहद अल कुवारी ने कतर टीवी से यह कहा है कि चार्जिंग स्टेशन को इसीलिए बढ़ाया जा रहा है ताकि लोग हाइब्रिड व्हीकल्स और ईवी को ज्यादा से ज्यादा यूज करें एंड कतर के कार्बन इमिशन को कम करें, और जब सब साथ मिल जाएंगे तो ये हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अब आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर अगर चल रहे हैं तो घबराइए मत, आपको अगली चार्जिंग लोकेशन कहाँ मिल सकती है, क्या वो खाली है कि नहीं, ये सब कुछ एक ऐप के जरिए पता लग जाएगा। यार कभी कभी लगता है डिजिटल एज में दुनिया कितनी सरल हो गई ना, विच इज थॉट।
0: शाम शानदार ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
1: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
0: Powered by iPay Wallet.
2: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ no stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do the iPay.
0: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
4: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super specialty clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
5: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
6: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
7: Baladna.
6: Taste that Qatar loves.
0: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
8: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
9: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स,
10: जबरदस्त ट्रैक्स।
11: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
12: 89.6
13: FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

डेस्परेडो तो नहीं, लेकिन अगर डेस्परेट हो जॉब के लिए तो एक अच्छी खबर। यस सिस्टर एंड माय ब्रदर, कतर में आपके लिए अब है जॉब ऑफर। यस हम आपको बता दें, सिविल सर्विस एंड गवर्नमेंट डेवलपमेंट ब्यूरो ने जनरल टैक्स अथॉरिटी के साथ मिलकर कतर में कवादर प्लेटफॉर्म पर नई जॉब अपॉर्चुनिटीज अनाउंस कर दी हैं। तो अगर आप फ्रेशर हो, यानी कि बस ग्रेजुएशन किया और सोच रहे हो यार कोई जॉब लग जाए, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस भी है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। आपके पास अकाउंटिंग, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स या कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स की डिग्री है, तो बस आप मेल हैं या फीमेल, फ्रेश ग्रेजुएट हैं या एक्सपीरियंस, ये वैकेंसीज में आप सबके लिए मौका है। कोशिश कीजिए, अगर हो जाए तो बस थैंक यू कह दीजिएगा और थोड़ा स्वीट्स खिला दीजिएगा, क्योंकि मैं ना चाहता हूँ यार इस कतर में सबकी जॉब लगे और लोग जॉब लगने के बाद यहाँ पर एक अच्छी लाइफस्टाइल जो है वो आगे अफोर्ड कर पाए। मुझे यही उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों तक ये बात पहुँचाएंगे और वो कवादर प्लेटफॉर्म पर जाकर अपने लिए इन नई जॉब अपॉर्चुनिटीज में, इसकी डिग्री है तो बस आप मेल हैं या फीमेल, फ्रेश ग्रेजुएट हैं या एक्सपीरियंस, ये वैकेंसीज में आप सबके लिए मौका है। कोशिश कीजिए, अगर हो जाए तो बस थैंक यू कह दीजिएगा और थोड़ा स्वीट्स खिला दीजिएगा, क्योंकि मैं ना चाहता हूँ यार इस कतर में सबकी जॉब लगे और लोग जॉब लगने के बाद यहाँ पर एक अच्छी लाइफस्टाइल जो है वो आगे अफोर्ड कर पाए। मुझे यही उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों तक ये बात पहुँचाएंगे और वो कवादर

0: खत्म।
1: मिर्ची पर इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस।
2: हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर समिन समीद, आई एम साइकियाट्रिस्ट एट नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर। आई एम हियर टू टॉक अबाउट टेकिंग केयर ऑफ आवर मेंटल हेल्थ। चेक इन टुडे, यू कैन चेक इन ऑन समवन यू केयर अबाउट। A simple "How are you really doing?" can mean a lot. You don't need to have all the answers. Sometimes listening without judgment and simply being there is absolutely enough. And finally, always seek help when in need.
3: Take care of your mind. It matters.
4: Dosti kai kusul hai madam? No sorry, no thank you.
5: Bhai saab, sorry and thank you. हमें दोस्ती नहीं, एंटरटेनमेंट चाहिए।
6: तो मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा।
7: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM, मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: चलो भाई कतर में एक और जगह घूमने की हो गई। यस, हमारे कतर में तामीर रियल स्टेट लेकर आए हैं कैनाल वॉक। #974 आप पूछेंगे कैनल वॉक क्या है, तो मैं आपको बता दूं इसे कैनल बे भी कह सकते हैं। यस, ये कैनल बे हमारे कतर में कत्तेफिन आइलैंड नॉर्थ की तरफ बना है, जो कि नया वाटर फ्रंट टूरिज्म एंड लेजर डेस्टिनेशन बन रहा है। एंड 580 मीटर लॉन्ग वाटर फ्रंट पर आप इस खूबसूरत इलाके में जाकर घूमेंगे। लेफ्ट साइड में आपको ढेर सारे अलग अलग ब्रांड्स के स्टोर नजर आने वाले। आउटडोर स्पेस होगी, लोग बैठेंगे, रेस्टोरेंट, कैफेज एंड रिटेल आउटलेट्स कुल मिलाकर जो मजा अब तक हम सिर्फ पर्ल में लेते थे, वो मजा अब हम इस वाटर फ्रंट के साउंड में लेंगे, जिसे कैनल वॉक का नाम दिया गया है। एक न्यू वाटर फ्रंट टूरिज्म डेस्टिनेशन हमारे कतर में तैयार है दोस्तों, यानी कि एक और विंटर डेस्टिनेशन एड ऑन हो गई है। अब इस बार ये भी कवर करना है, क्योंकि कतर में कुछ भी नया खुले वहां से हमारी जब तक सेल्फी ना आ जाए, एक दो हमारे विजिट ना हो जाए, हमें लगता है हमारे मन में अंदर कुछ काट रहा है कि गौरव तुम मिस कर रहे हो बेटा, तो वो मिसिंग तो हम नहीं चाहते, हम जल्दी जल्दी जाएंगे। 89.6 मिर्ची वन, आप भी प्लान कर लो।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vieja la burga.
1: Mirchi, burga. Hello.
2: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
1: मोबाइल?
2: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है, इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
1: क्या रिपोर्ट आ गई है?
2: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
1: मोबाइल चोरी हो गया?
2: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
1: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
2: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
1: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
2: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है, हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
1: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
2: भाई मैं कह रहा हूँ, चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
1: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
2: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर बनाता हूँ।
1: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
2: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल्स आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
1: हाँ जी सर।
2: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
1: अच्छा, बात करवा दो। कौन है
3: ये? नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर, तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
1: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। Looking to grow your business in Qatar's booming hospitality and food industry? Then don't miss Hospitality Qatar 2026, the region's leading platform for hospitality, food service and tourism. Meet key decision makers, investors and industry professionals. Showcase your latest products and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.
5: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 30% off on making charges. Offer only till 25th October. Rush to your nearest Kalyan Jewelers store today to grab this offer. Conditions apply.
6: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
4: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
6: This initiative is driven by GWM.
7: Ja Simran, ja jeele apni zindagi. Ja beta, ja.
8: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: जब से झनकार से है दिल के तार में तब से
1: 89.6 मिर्ची वन पर मैं हूँ आरजे मस्मौला गौरव, और मैं हमेशा कहता हूँ जब पैसे पास में हो और खर्चे ना कर पा रहे हो तो इन्वेस्ट करो।
2: मस्त मौला गौरव
1: एंड इन्वेस्ट करने के लिए गोल्ड इज वन सेफ इन्वेस्टमेंट। वेल, आपको बताएंगे अलफरदान एक्सचेंज के गोल्ड रेट।
3: गोल्ड अपडेट।
1: वेल, ऐसे में मैं आपको बता दूं, हमारे कतर में अलफरदान एक्सचेंज जो कि पैम के रियल एजेंट हैं, जो लेकर आते हैं सिर्फ सर्टिफाइड 24 कैरेट गोल्ड, वही पैम 1 ग्राम गोल्ड लेडी फौशनाबाद, आपको मिलेगा 568 कतरी रियाल पर ग्राम। वहीं अगर हम पैम 5 ग्राम की बात करें, ये आपको मिलेगा 2661 कतरी रियाल। पैम 10 ग्राम गोल्ड लेडी फौशनाबाद एट 5252 कतरी रियाल। पैम का 1 औंस गोल्ड लेडी फौचना बार एट 16,234 कतरी रियाल। एंड पैम 10 तोला गोल्ड बार एट 60,264 कतरी रियाल। तो अगर बचाए हैं पैसे एंड करना चाहते हो इन्वेस्ट, तो अलफरदान एक्सचेंज के इस पैम में करो इन्वेस्ट ताकि बाद में अच्छा रिटर्न मिले। 89.6 मिर्ची वन पर ये थे अलफरदान एक्सचेंज गोल्ड रेट। मिर्ची इट्स हॉट।
4: Stay ahead of today's gold rates with Alfardan Exchange, PAMP's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAMP gold bars
5: and earn Qatar Airways Avios today.
4: Visit our branches or download the app now.

0: फीफा वर्ल्ड कप 2022, फिर फीबा यानी कि बास्केटबॉल का वर्ल्ड कप 2027, तो क्या हम एशियन गेम्स 2030 के बाद 2036 में ओलंपिक्स भी होस्ट करेंगे क्या? वेल, लक्षण तो कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। कतर इज अमंग 7 नेशंस जो कि करंटली मेजबान बनने के लिए दावेदारी पेश कर रहे हैं 2036 ओलंपिक गेम्स के लिए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने क्लियर बताया है कि नेक्स्ट स्टेप के लिए सिलेक्शन प्रोसेस के लिए अब इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे हम, जो कि मिड 2029 में होगा। कौन सी कंट्री होगी ये हमें 2029 के जून जुलाई तक पता लगेगा कि वो कौन सा देश है। क्या वो जर्मनी है, क्या वो हंगरी है, इंडिया है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, साउथ अफ्रीका है, तुर्की है या फिर कतर है, क्योंकि यही वो 7 नेशंस हैं जो लगातार 2036 के ओलंपिक को होस्ट करने के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। एंड आई एम श्योर जिस हिसाब से कतर के पास एक लंबा एक्सपर्टीज है, ये हमें ही मिलना चाहिए। सबसे पहले 2006 में हमने एशियन गेम्स होस्ट किया, उसके बाद अगले 16 सालों में फीफा वर्ल्ड कप एंड दैट टू इन वन कंट्री वंडर, जो कि एक ही 70 किलोमीटर की रेंज में घूमता रहा एंड पूरी दुनिया ने कहा वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट कप एवर एडिशन था ये। अब ऐसे में क्या हम 2030 एशियन गेम्स के बाद और दावेदारी को मजबूत कर देंगे? तैयार हो जाइए, मिड 2029 तक तो हमें पता ही लग जाना है। एंड आई एम श्योर हमने जो सपना देखा है उसमें हमने यही कहा था, हमें ओलंपिक्स भी एक बार देखना और देखना हमें कतर वो भी दिखा देगा, क्योंकि यहाँ जो सोचो वो हो ही जाता है। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, ब्रॉट टू यू बाय किम्स हेल्थ मेडिकल सेंटर।

समझ में ना आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

अगर लगाओगे इन्फ्लुएंजा की सुई तो कोई भी इन्फेक्शन तुमको ना छुई। आपके साथ देवी और सज्जनों, मौसम बदलने वाला है, इसको ध्यान रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने अनाउंस किया है द लॉन्च ऑफ नेशनल सीजनल इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन। यस, ये मार्च 2027 तक चलाया जाएगा एंड हम आपको बता दें इन कोलैबोरेशन विद हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर कॉर्पोरेशन एज वेल एज पब्लिक सेमी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज कतर में ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेकर आ गए। ये बेसिकली हमारी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस को बचाने के लिए होता है क्योंकि विंटर सीजन आ रहा है, ऐसे में लोग और अलग अलग तरह के इन्फेक्शन में आपको दिखाई पड़ेंगे। इसके लिए बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट की गई है, स्पेशली वल्नरेबल पॉपुलेशन इंक्लूडिंग इंडिविजुअल एज 50 एंड उसके ज्यादा एज वाले। यस, साथ में जो 6 महीने से लेकर 5 साल के बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फिर वो जो क्रॉनिक डिजीज सच एज डायबिटीज, अस्थमा या उसके पेशेंट है, उन सबको तो ये जरूर लगवानी चाहिए एंड ये बिल्कुल सेफ होती है, किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है एंड दिस यू कैन गेट इट फ्री ऑफ चार्ज एट पीएचसीसी सेंटर्स, एचएमसी हेल्थ फैसिलिटीज एंड मोर देन 50 अदर प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटीज पूरे कतर में। ये आपके लिए सुविधा बनाई गई है ताकि आप किसी भी तरह के वेदर से, किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचे रहें। थैंक यू टू MOPH एंड हमद मेडिकल कॉर्पोरेशन एंड अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफ हेल्थ केयर एंड कतर। सच में जब आप इस तरह से हमारी केयर करते हो तो हमें यही लगता है यार कि हम घर से बिल्कुल दूर नहीं है, हमारा कोई ख्याल रखने वाला हर दम हमारे साथ है। 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

Yes, 89.6 बिरजीवन पर मस्फोरो गौरव आपके साथ, और मैं बात कर रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ म्युनिसिपैलिटी के बीचेस पर चलने वाले उन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की जो पब्लिक फैसिलिटी पब्लिक सर्विसेज को और अच्छा करने के लिए हो रहे हैं। यस, कतर में 18 में से 8 ऐसे बीचेस अब आपके लिए ओपन है जहां पर पब्लिक फैसिलिटीज को बढ़ा दिया गया है, यानी कि पहले वहां शावर नहीं था वो हो गया है, आपके लिए चीजें ईजी की गई हैं, बारबेक्यू बनाए गए हैं, एंड ऐसा 18 टोटल बीचेस पर होना है जिसमें से 8 में काम हो गया है, 10 में अभी भी चल रहा है, यानी कि आने वाले टाइम में हमारे आपके लिए बीच डेस्टिनेशन और एड ऑन हो जाएंगे, एंड हमारी और आपकी पार्टी और इजी हो जाएगी, एंड बच्चों के साथ फैमिली के साथ जब भी हम जाएंगे दोस्तों यारों के साथ, बहुत सारा फन मस्ती धमाल हमारा उस बीच पे अवेट कर रहा होगा। लेकिन इसके लिए अगर हमसे और आपसे सिर्फ ये उम्मीद की जा रही है कि हमें सफाई रखनी है तो वो काम जरूर कीजिएगा। मैंने अक्सर देखा है लोग वाटर बॉटल्स लेकर जाते तो जरूर है एंड बाद में वो प्लास्टिक की बची बॉटल्स वहीं छोड़ देते हैं। ये समझिए कतर हमारा घर है, इसकी सफाई रखना हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है। जैसे आप अपने रूम को, अपने ड्राइंग रूम को, अपने बेडरूम को चकाचक रखते हैं ना, कतर भी हमारा घर है, इसको भी चकाचक रखा कीजिए। आइए वादा करें इस बार जब भी हम बीच पार्टी पे जाएंगे, बारबेक्यू के लिए जाएंगे, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, कोई भी सामान वहां छोड़ कर नहीं आएंगे, सब गार्बेज बैग में डालकर उस बॉक्स में डालेंगे जो वहां पर गार्बेज बॉक्स होगा। इस उम्मीद से कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं और ये काम जरूर करेंगे। मस्मोलोग और लेगा अलविदा, लौटेगा कल शाम एक बार फिर से ढेर सारे फन मस्ती धमाल के साथ मिर्ची पर। तब तक ले अभी भी मां सलामा मिर्ची थॉट।

0: Blana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi.
1: Hello, hello, Mirchi sun rahe hain aap. Ab baari hai hafte ke hottest pop gaano ki. Hello and welcome. This is the Gaana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show jahan hafte ke top 10 hottest pop gaano ka countdown hum aapke liye lekar aate hain. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJKanika. Koi gaana share karna hai, koi baatein batani hai, bindaas aake hit me up. Hafte ke top 10 hottest pop gaano mein ek nayi entry hai. Hamara 90s and 2000s ka indie pop classic hum feature karne wale hain. All this and more. To seedha shuruaat karti hu is hafte ke countdown ki with Gaana number 10. 18 hafton से ये गाना इस काउंटडाउन पर बरकरार. संजू राठौर की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है बैंगल्स. दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद फरक की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है तारे. 9 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय. नंबर 10.

लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है।

0: बंजारी की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स, गाने का नाम है बैरन। 28 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 7। हर साल अक्टूबर आता है तो ये फीलिंग आती है ये 10 महीने कहाँ निकल गए। रिसेंटली मैंने एक गाना सुना एंड आई रियलाइज कि 10 साल कहाँ निकल गए।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: Hello and welcome. This is the Gaana Indi Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is @RJKanika. The show is all about the hottest pop music of the week. But recently ek gaane ne mujhe ekdam surprise kar diya when I realized ki is gaane ko, listen to this song, isko 10 saal ho gaye hain. Mere yaar mera pyar hai jahan hai ye nikke nikke shots. गाने का नाम है बाकी बातें पीने बाद बाय अर्जुन कानूंगो एंड बादशाह 10 साल। यस, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पार्टी में अपने दोस्तों के साथ इस गाने पे डांस कर रही थी एंड व्हेन आई रियलाइज कि हाँ इसको 10 साल हो गए, आई वाज लाइक नहीं पॉसिबल ही नहीं है, बट इट इज ट्रू। 10 साल पहले अर्जुन कानूंगो अपने करियर में जो स्टार्ट कर रहे थे एंड टू गेट अ बादशाह कोलैब वाज सच अ ग्रेट डील फॉर हिम एंड इसकी स्टोरी भी बहुत फनी है। बाय 2016 बादशाह वाज बादशाह, ठीक है, एकदम रिकॉग्नाइज्ड रैपर, बट अर्जुन वाज जस्ट स्टार्टिंग आउट तो ही वांटेड बादशाह टू कोलैबोरेट ऑन दिस सॉन्ग। अर्जुन ने ऐसे ही चांस लिया, बादशाह को ईमेल लिखा दैट मैं ये गाना कर रहा हूँ, आई वुड लव फॉर यू टू रैप ऑन इट। एक दिन कोई रिप्लाई नहीं आया, दो दिन कोई रिप्लाई नहीं आया, तीसरे दिन सीधा अटैचमेंट में एक रैप आता है। बादशाह ने ना कोई मीटिंग करी ना कोई स्टूडियो सेशन, उस अटैचमेंट में जो रैप का पार्ट था वही आज इस गाने में है। ये दोनों पहली बार मिले भी इस गाने के वीडियो शूट पर थे एंड ऑलमोस्ट 10 ईयर्स लेटर दिस सॉन्ग इज स्टिल अ टॉप पार्टी प्लेलिस्ट फेवरेट। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। थ्रोबैक टू 2016, दिस इज बाकी बातें पीने बाद बाय अर्जुन कानूंगो एंड बादशाह ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
2: रात

0: हर थोड़े वक्त के बाद मैं यही बोलती रहती हूँ कि वक्त कितनी जल्दी निकल जाता है, एंड दिस सॉन्ग इज द एग्जांपल ऑफ दैट. दैट वाज अर्जुन गानोंगो बादशाह का गाना बाकी बातें पीने बाद. नाउ बैक टू द काउंटडाउन. अगले वाला गाना इज अ साई अभ्यंकर सॉन्ग, विवेक के लिरिक्स, गाने का नाम है राधी माँ, दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उसके बाद मिट्टा रौर का गाना 28 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, पिछले हफ्ते से 3 पोजिशन नीचे ड्रॉप होके शीशा इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है Enjoy.
1: Number 5.

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, sakka bana. Rambala. Murga, murga. Naveed wala murga. Mirchi murga.
3: Hello.
4: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: बोल रहे
4: हैं। राज जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
3: बढ़िया, कौन सा बोल रहे हैं?
4: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
3: लेकिन है किस लिए, ये तो बताइए कहाँ पे लगाना
4: नहीं
3: है?
4: नहीं, वही मैं, जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
3: तो
4: हाँ, वही वही वही मैं आपको बता रहा हूँ।
3: पूरी
4: नहीं नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
3: बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास?
4: नहीं नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
3: ये कॉपी मुझे भी भेजना
4: राजी। एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
3: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेज।
4: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहें तो?
3: हाँ बिल्कुल बताइए।
4: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को। नहीं, ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
3: कुकड़ों को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
6: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 30% off on making charges. Offer only till 25th October. Rush to your nearest Kalyan Jewelers store today to grab this offer. Conditions apply.
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.
1: Ghana Indie Top 10.
0: Kanika ke saath on Mirchi.
7: Number 4.

0: Craziest collab of 2026, Shreya Ghoshal ka gana. Arjun KDS 54 Ron ka gana featuring Shreya Ghoshal. That is Kalyani this week on Gana number 4.
1: Gana Indie Top 10. Kanika ke saath. On Mirchi.
0: Mirchi par, this is the Gana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Connect with me Instagram par jao. Mera handle is at RJ Kanika. It's time for what we call हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं. द सॉन्ग यू फीचर्ड लास्ट वीक वॉज
2: सोचता हूँ उसका दिल कभी मुझ पे आए तो.
0: एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है परी हूँ मैं. 1991 में रिलीज हुआ था. सुनीता राव की आवाज, लेस्ली लुइस का म्यूजिक, राजेश जौहरी के लिरिक्स. सुनीता राव की एल्बम धुआं का था गाना. एंड आई नो बहुत लोगों को शॉक लगा होगा कि ये 1991 में आया था, पर तब से लेके अब तक इस गाने ने बहुत सारी जनरेशन की लड़कियों को ना एक अलग तरह का स्पेशल फील करवाया है. आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं छोटी थी ये गाना बजता था और मैं सीधा शीशे के सामने भागती थी, खुद को देखती थी, थोड़ा इतराती थी, थोड़ा डांस करो, थोड़े बाल बनाओ, मतलब फुल ऑन मेन कैरेक्टर वाइब. एंड आज नवरात्रि एंड गरबा का सबसे हिट गाना है ये. परी हूँ मैं हर तरफ सुनाई देता है, गरबा नाइट, डांडिया प्लेलिस्ट, बिकॉज इट मेक्स एवरी गर्ल हैव दैट मेन कैरेक्टर मोमेंट. वो वाली फीलिंग होती है ना कि आज मैं मस्त लग रही हूँ, सुंदर लग रही हूँ, मुझे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है. आई एम माई ओन सेंटर. एंड आई होप ऑल ऑफ अस फील लाइक दैट एवरी टाइम. बट इस गाने को सुनते हुए तो डेफिनेटली हम ये फील करने वाले हैं. हमने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. सुनीता राव की आवाज, लेस्ली लुइस की कॉम्पोजिशन. गाने का नाम है परी हूँ मैं ऑन अ कैसेट क्लासिक दिस वीक. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.

सुनी तो रहोगी आवाज में, दैट वॉज परी हूँ मैं। बचपन नहीं, अभी भी मैं बस इतरा रही थी, खुद को देख रही थी, बाल बना रही थी, शर्मा रही थी। This song makes you feel so beautiful. Thank you, Sunita Rao, for this iconic song. At RJ Cunning on Instagram पर आओ, कोई भी गाना from the 90s, 2000s, जो आज भी आपके लिए एक iconic गाना है, मुझसे और अश्काय के साथ आके शेयर करो. We might feature your song next week. Now back to the countdown, अगले वाले गाने की बारी. कृष्णा धंधन्योली वाला का गाना, गाने का नाम है बूम शाका. चार हफ्तों से इस countdown पर बरकरार, पिछले हफ्ते से एक पोजिशन ऊपर जम्प करके बूम शाका is playing right next for you on गाना नंबर 3. You're listening to Gaana Indie Top 10, बंदी का नाम है कनिका, enjoy. Number 3.

0: 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची पर इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे एन इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस।
2: हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर समीन समीद। आई एम साइकियाट्रिस्ट एट नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर। आई एम हियर टू टॉक अबाउट टेकिंग केयर ऑफ आवर मेंटल हेल्थ। चेक इन टुडे, यू कैन चेक इन ऑन समवन यू केयर अबाउट। A simple, how are you really doing, can mean a lot. You don't need to have all the answers. Sometimes, listening without judgment and simply being there is absolutely enough. And finally, always seek help when in need.
3: Take care of your mind. It matters.
4: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
5: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
4: This initiative is driven by GWM.
6: Looking to grow your business, expand your network and reach the right customers? Introducing the Qatar Business Card Directory, QBCD, the flagship product of Media Plus WLL Doha, now proudly launching its 20th edition. Be part of this major milestone. Enroll your business card today and take your business towards greater visibility and stronger connections. For business inquiries, call 5509389 or download the QBCD app now. Connect, promote, grow.
7: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
8: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
11: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका। दिस इज द गाना इंडी टॉप 10, ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां हफ्ते के टॉप दिस हॉटेस्ट पॉप गानों का रिपोर्ट कार्ड लेकर आते हैं हम आपके लिए। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, मेरा हैंडल इज @RJKanika। अपना रिपोर्ट कार्ड किसको पसंद है, लेकिन दूसरों की रैंकिंग झांकने में बहुत मजा आता है। गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 तक का सफर हम पूरा कर चुके हैं, एंड पॉप म्यूजिक के इस हफ्ते के काउंटडाउन में, बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, एक क्विक रिकैप करते हैं राइट फ्रॉम द टॉप। संजू राठौड़ का बैंगल्स दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। फरक का तारे स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। श्रेया घोषाल का वेरी पिया ने डेब्यू किया ऑन गाना नंबर 8। द हरियाणवी सेंसेशन बाय बंजारे दिस इज बैरन दिस वीक ऑन गाना नंबर 7। साई अभ्यंकर का राधी माँ वॉज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। देन मिट्टा और का शीशा ऑन गाना नंबर 5।
12: तेरे आगे पीछे लंके सुन दोना छोरी का हर रंग तेरे।
11: अर्जुन KDS 54 रॉन एंड श्रेया घोषाल का कल्याणी ऑन गाना नंबर 4। कृष्णा एंड धंधा न्योली वाला का बूम शाका ऑन गाना नंबर 3। एंड नाउ द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द काउंटडाउन। गाना नंबर 2 पर जो गाना है वो पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप कर आया है। बंजारे दी आर्टिस्ट का गाना, उन्हीं की आवाज, उन्हीं की कॉम्पोजिशन, गाने का नाम है बरसात, दिस वीक ऑन गाना नंबर 2। एंड उसके बाद द न्यूमेरो ऊनो सॉन्ग ऑफ द वीक इज येट अगेन बाय बादशाह। हितेन का म्यूजिक फीचरिंग शर्वी यादव, गाने का नाम है बैंगर। 6 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, बैंगर इज दिस वीक ऑन गाना नंबर 1। दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।

तेरा बस लिखता गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: इतने सारे करोड़ों लोग हैं दुनिया में और एक इंसान एक दिन में करोड़ों इमोशंस से गुजरता है। किसी के दिल में एक तारा गूंज रहा होता है तो किसी के दिल में नगाड़े बज रहे होते हैं जोर जोर से गुस्सा वाले। नहीं
1: मिर्ची कैफे,
0: वेलकम टू मिर्ची कैफे। मैं हूँ आपके साथ पारुल और मिर्ची पर मेरा काम है आपके लिए बेहतरीन गाने लेकर आना हर वीकेंड और आपको ऐसी बातें बताना जो आपके अंदर ही कहीं छुपी हुई हैं। जैसे कि एक्सेप्टेंस, ये शब्द सुना है आपने, बड़ा सुन रहे हैं हम आजकल कि यार जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करो वगैरह वगैरह। बट जब अहमद फराज लिखते हैं एक्सेप्टेंस को तो पता क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं सेल्फ एक्सेप्टेंस के बारे में और वो लिखते हैं कि हजार गम है खुलासा कौन करे, मुस्कुरा देता हूँ तमाशा कौन करे। वाह वाह वाह वाह, फराज साहब की बात कुछ और। और यहाँ पर जो मैं आपके लिए गाने लेकर आऊंगी उनकी भी बात कुछ और होनी चाहिए। ऑल्सो आई हैव अ स्पेशल गेस्ट विद मी टुडे, तो कामली वेट करिए सरप्राइज के लिए। तो अगला जो गाना आपके लिए लेकर आई हूँ दैट्स कॉल्ड ग्रे वाला शेड, हर्षदीप कौर और जजीम शर्मा की आवाज में। सुनो इसको, आई विल जस्ट बी राइट बैक। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. La vida para la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको. आपका अकाउंट नंबर 337103 राइट? वन सेकेंड सर. सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000. वन सेकेंड सर. आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
2: नहीं. तो
3: आपने नहीं किया है?
2: नहीं.
3: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
2: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
3: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम. मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है. आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले, किसने निकाला, किस पे शक है आपको?
2: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना कुछ को चेक दिया है, ना मैंने एटीएम यूज किया है.
3: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
2: मैंने 2 पैसे भी निकाले.
3: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
2: मैंने कोई पैसा निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया. एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल. ओके
3: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं, लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको. मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
2: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पर मेरा नाम लिखा है.
3: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल लिए हैं. मुझे नहीं पता. आप मुझे क्या बताए? आप बतमीजी से बात मत करिए.
2: सबको लगा दूंगा लाइन में.
3: सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए. बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी. स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं. सर ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे. 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है.
2: क्या
3: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
2: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
4: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ. बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है. 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं आपके अकाउंट में. 1,42,000 रुपए हैं. और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था.
2: लेकिन
3: सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है. नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: GWM के मिर्ची रिचार्ज में DMIS स्कूल में बच्चों ने किया फन. लेट्स हियर इट फ्रॉम देम.
7: इट वाज द बेस्ट. आई लाइक द मैजिक शो.
8: मैजिक शो? एंड यू?
7: इट वाज वेरी नाइस.
8: यू लाइक्ड इट?
7: यस.
8: वी शुड कम अगेन?
7: यस.
8: व्हाट्स योर नेम?
7: आयरा.
8: एंड योर्स?
7: अनविता.
8: व्हाट वाज द बेस्ट?
7: द मैजिक शो.
9: दिस रिचार्ज इज सो कूल, बेटर देन एनीथिंग एल्स.
10: थैंक यू मिर्ची. थैंक यू GWM. वी एंजॉयड इट्स हॉट.
11: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 30% off on making charges. Offer only till 25th October. Rush to your nearest Kalyan Jewelers store today to grab this offer. Conditions apply.
12: Back to school means more journeys, more traffic and more reasons to drive with peace of mind.
13: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400, with 24/7 roadside assistance including towing, flat tire help, battery jump start and lockout assistance, plus flexible payments and 7% cashback. Call 800-0786 or visit bimaonline.com.
12: Bima, for your peace of mind. Terms and conditions apply.
14: फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है? फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी. डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ. तो मार्क योर कैलेंडर, 12 से 14 अक्टूबर, DECC दोहा. फूड कतर 2026. कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो.
15: खट खट.
16: Who there?
15: बनता.
16: बनता who?
15: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को.
16: खट खट. Who there?
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's on.

0: क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि हम सारी जिंदगी आधी से ज्यादा इसमें बिता देते हैं कि कोई हमें समझे, कोई हमें ज्यादा खूबसूरत समझे, कोई हमें ज्यादा इंटेलिजेंट समझे, कोई हमें पसंद करे, लेकिन बाय द टाइम वी एक्चुअली गेट वाइजर हमें यकीन होता है कि जो हमें सच में प्यार करते हैं ना, जो हमें दिल से देखते हैं, वो हमारे दिल देखते हैं, हमारी क्वालिटीज देखते हैं और हमारे इम्परफेक्शंस को ही पसंद करते हैं।
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। सो बेसिकली व्हाट आई मीन इज कि कोई किसी के कुछ नाम करे ना करे, कोई तुमको वो इज्जत दे या ना दे, जस्ट रिमेम्बर कि अगर आपको किसी के पीछे भागना पड़ रहा है ना और एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि क्यों तुम इम्पोर्टेंट हो, वो इंसान ही इम्पोर्टेंट नहीं है। बट होता है ना, एवरीबडी सेज कि रेड फ्लैग्स और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स के पीछे पता नहीं क्यों हम अट्रैक्ट होते हैं। एक अजीब सा साइंटिफिक लॉजिक है विच सेज कि हम मेलेंकली या परेशानी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, पता नहीं क्यों, जबकि हमें यहाँ भेजा गया था इस धरती पर खुश रहने के लिए, सबसे इंटेलिजेंट बींग बनाकर, और देख लो हम अपना क्या कर रहे हैं बेटा गर्क। तो सुनो, अपना दिल ना जरा संभाल के रखो, इतना परेशान मत हुआ करो यार। सुनो इस गाने को जो आपके लिए लेकर आ रही हूँ, दिल गिरा दफतन, एश किंग और बेनी दयाल की आवाज में, और फिर आपको मिलाने वाली हूँ एक स्पेशल गेस्ट से। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, मैं हूँ आपके साथ पारुल, मिर्ची कैफे पर, इट्स हॉट।

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
1: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
0: Powered by iPay Wallet.
2: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ. No stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do that iPay.
0: In association with Dairy Queen. Beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
4: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
5: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
6: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
7: Baladna.
6: Taste that Qatar loves.
0: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
8: Huh? Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
9: Yes, Bebo.
8: Sirf 25% pay karke gold price lock kar sakti hu?
9: Yes.
8: Catch kya hai?
9: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free cash vouchers. Aur sirf 25% pay karke gold rate ko block kar do.
8: I still can't believe it. No catch.
9: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds.
10: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
11: ओ भाई जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक
12: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
13: 89.6 FM मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: अ ब्यूटीफुल ट्रैक शाहिद माल्या की आवाज में अभी आपने सुना मिर्ची कैफे पर एक कुड़ी।
1: मिर्ची कैफे,
0: हर इंसान की आवाज की पिच हमारे दिमाग के खास हिस्से जो कि सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस STS कहलाता है, तो वो ना एक ऑडियो फिंगरप्रिंट बना लेता है हमारे दिमाग में। और कुछ आवाजें तो ऐसी होती हैं जिनको याद रखने का दिल करता है, स्पेशल पोजीशन मिलती है उसको हमारे दिमागी ऑडियो फिंगरप्रिंट में, और वो एक आवाज है शाहिद माल्या। व्हाट अ ब्यूटीफुल वॉइस। तो शाहिद माल्या जी आज मेरे साथ हैं यहाँ मिर्ची कैफे पर। यस, सरप्राइज सरप्राइज। बताएं शाहिद, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके?
2: सलाम आदाब, मैं हूँ शाहिद माल्या और आप मुझे सुन रहे हैं मिर्ची कैफे पर पारुल के साथ।
0: बहुत बहुत स्वागत शाहिद जी। आपको पता है आज ही मैं, जो लोग ना मुझे मिर्ची कैफे के लिए रिकमेंडेशंस भेजते हैं कि प्लीज आप ये गाना चला देना शो पे, मैं अपने मैसेजेस पढ़ रही थी लास्ट वीक के, तो किसी ने लिखकर भेजा हुआ था एक तू ही सुनना है फ्रॉम द मूवी मौसम। सो एक तू ही और रब्बा मैं तो मर गया, प्लीज इन दोनों गानों के बारे में अगर बात नहीं करी तो फिर तो क्या ही बात करी, बताइए ना।
2: एक तू ही, तू ही बहुत ही करीब है मेरे दिल के गाना, क्योंकि जब मैंने मौसम के लिए रब्बा मैं तो मर गया गाया और एक तू ही गाया
0: जी।
2: तो मैं वेट कर रहा था कि एक तू ही रिलीज हो, क्योंकि उस गाने से मुझे बहुत लगाव था और पहला गाना था जो मैंने प्रीतम सर के लिए गाया था, रब्बा मैंने बाद में गाया था। तो व्हाट अ कोइंसिडेंस
0: है ना, आपके गानों को सुनकर लोग रोते हैं, हंसते हैं, शादी करते हैं, ब्रेकअप करते हैं, सब कुछ करते करते आपके गाने सुन रहे हैं लोग। आप को सबसे ज्यादा करीब कौन सा इमोशन है जब आप गाते हैं?
2: मुझे आप कोई भी सब्जेक्ट दें उस पर मैं पूरा खरा उतरने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे मैं अपनी गायकी के क्षेत्र का इरफान खान बनना चाहता हूँ ताकि मैं हर रोल कर सकूँ।
0: वाह, क्या बात कही आपने, अल्टीमेट यार।
2: पारुल, मैं एक रफी साहब को उस्ताद मानता हूँ अपना, तो मैंने उनको हर जोनर को गाते भी सुना है।
0: तो चलो फिर इसी बात पे एक गाना ये ब्यूटीफुल सा सुनकर वापस लौटते हैं और फिर शाहिद माल्या से पूछेंगे मोहम्मद रफी साहब के गाने। लेट्स डू दिस। सुनते रहो मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: मिर्ची पर इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस.
1: हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर समीन समीद. आई एम साइकियाट्रिस्ट एट नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर. आई एम हियर टू टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स दैट वी ऑफन इग्नोर व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ. दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर फॉर अस टू नॉट फॉरगेट अबाउट टेकिंग केयर ऑफ आवर मेंटल हेल्थ. फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक अ पॉज. Life can get very busy and sometimes we forget to pause. Take a few minutes today to step away from your phone, breathe deeply and simply be present. You don't always have to keep going. Sometimes a small pause is exactly what your mind needs.
2: Take care of your mind. It matters. Looking to grow your business in Qatar's booming hospitality and food industry? Then don't miss Hospitality Qatar 2026, the region's leading platform for hospitality, food service and tourism. Meet key decision makers, investors and industry professionals. Showcase your latest products and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.
3: Подумайте, какие версии, для чего эти треугольники приклеены здесь.
2: Mirchi Terminal Season 5. Coming soon. Coming soon.

0: रहे हैं आप मिर्ची कैफे। वेलकम वेलकम
1: मिर्ची कैफे।
0: मिर्ची पर मैं हूँ आपके साथ पारुल, और आज मेरे साथ हैं खास मेहमान शाहिद माल्या। इतने प्यारे प्यारे उनके गाने मैं आपको सुनाती थी, मुझे लगा कि आज थोड़ी बातचीत हो जाए और साथ में गुनगुना भी ले। सो लाइक वी वर टॉकिंग कि मोहम्मद रफी साहब को ये अपना गुरु मानते हैं और हम सब बहुत बड़े फैंस हैं। ओके सो लेट्स डू वन थिंग, एक गेम खेलते हैं। मैं एक लाइन गाऊंगी रफी साहब के गाने की और शाहिद आपको तुरंत उसके बाद वाली लाइन गानी है। स्टार्ट। दिल

0: ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच शाहिद,
1: बताएं कि सुरीली हैं बहुत माशाल्लाह, क्या बात, बहुत अच्छी बात,
0: ऐसे शौक है मुझे भी गाने का,
1: बिखरने का शौक मुझको भी है
0: ना, और वो हमारा फेवरेट गाना भी है।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।

0: मैजिकल माहौल बना हुआ है मिर्ची कैफे। सुन रहे हैं आप मेरे यानी पारुल के साथ। देखो भाई, मैं तो यहाँ पर शाहिद माल्या जी के साथ बैठकर बहुत सारी जैमिंग और गाने गा रही हूँ। आपको सुनाया मैंने बॉम्बे वाइकिंग्स एंड फाल्गुनी पाठक का गाना तेरा मेरा प्यार। व्हाट अ वाइब ना, लवली सॉन्ग दिस इज
1: मिर्ची कैफे।
0: मिर्ची पर मैं हूँ आपके साथ पारुल, और आज मेरे साथ हैं खास मेहमान शाहिद माल्या। शाहिद, आपसे एक सवाल। मुझे ये बताइए कि बहुत सारे रीमेक्स की कड़ी में आपको कैसा लगता है, कि अच्छा लगता है? पहले तो मुझे बताओ, जो पुराने गाने रीमेक होके आ जाते हैं।
2: आई लव द बीट ऑफ रिमिक्स, बट बुरा ये लगता है कि पुराने गाने रिमिक्स होने चाहिए, लेकिन इस तरीके से नहीं कि वो क्रेडिट ही उनको ना मिले जो
0: ब्यूटी खो दें, है ना?
2: ब्यूटी तो खो ही जाती है ऑब्वियसली।
0: मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि धुरंधर के रिमिक्सेस फिर भी कुछ जस्टिस किए। आपको क्या लगता है?
2: क्योंकि उन्होंने सेम वॉइस रखी ना उसमें, दैट्स व्हाई।
0: बीट ऐड करा, ब्यूटीफाई किया।
2: आई रियली अप्रिशिएट सचदेवा जी, शाश्वत कि उन्होंने, शाश्वत ने रिमिक्स भी रखा, लेकिन मुझे खुशी इस बात की ओरिजिनल सिंगर्स उसमें ऐड थे।
0: जी, आई थिंक दिस इज द वे टू मेक रिमिक्स, है ना? शाहिद माल्या अप्रूव्ड। ओके, और ये बताइए दरिया या एक कुड़ी?
2: हाँ, एक कुड़ी।
0: ओके, एक कुड़ी या कुकड़?
2: हाँ, एक कुड़ी।
0: ओके, एक कुड़ी या कुड़माई?
2: कुड़माई।
0: कुड़माई, थोड़ा सा कुड़माई सुनाइए ना, एक लाइन।
2: ले रहा सबला है तेरी

0: यू
1: ब्यूटिफुल. अच्छा कुड़माई या शौक?
0: शौक
1: शौक. चलिए शौक या रब्बा?
0: रब्बा
1: रब्बा. ओके रब्बा या एक कुड़ी?
0: रब्बा
1: रब्बा.
0: चूंकि रब्बा के आगे कोई भी नहीं आएगा, रब के आगे दूसरा कोई नाम आ ही नहीं सकता.
1: कमाल की बात.
0: अब दिल

0: कर गया
1: ओए, और अब्बा मैं तो मर गया ओए, शदाई मुझे कर गया ओए।
0: और लवली
2: शुक्रिया।
3: थैंक यू। मैं अपने सवाल भूल गई हूँ, मैं कॉन्सर्ट में पहुंच चुकी हूँ।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La birba la burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: Could I speak to Manish, please?
1: Speaking.
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से.
1: ओके
2: मनीष, आई नीड योर फेवर. आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी. मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को. मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, कि पहले इंसान एप था. आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में. यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया. राइट,
1: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
2: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे. इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके.
1: 2 घंटे करना क्या है, अभी भी नहीं समझ पा रहा
2: हूं. वही, तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था. तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे. तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर. आई एम श्योर के सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था. बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी. तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए. कल का रख ले. मेरी बात सुनो. आई एम प्रोफेसर. मेरी बात सुनिए यार. आप हेलो. वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है.
1: हेलो,
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी. मेरी बात सुनिए. मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने. उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार. मैं मुर्गा बनाया, तुम रेडियो मिर्ची पे हो. आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार. मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने जो लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार. इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. Looking to grow your business, expand your network, and reach the right customers? Introducing the Qatar Business Card Directory, QBCD, the flagship product of Media Plus WLL, Doha, now proudly launching its 20th edition. Be part of this major milestone. Enroll your business card today and take your business towards greater visibility and stronger connections. For business inquiries, call 5509-389 or download the QBCD app now. Connect, promote, grow. फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है? फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी. डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ. तो मार्क योर कैलेंडर, 12th से 14th अक्टूबर, DECC दोहा, फूड कतर 2026. कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो.
3: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 30% off on making charges. Offer only till 25th October. Rush to your nearest Kalyan Jewelers store today to grab this offer. Conditions apply.
4: Cut, cut!
5: Who that?
4: Zahir!
5: Zahir! Zahir who?
4: Zahir si baat hai. Main hu aur koi nahi.
5: Cut, cut! Who that?
0: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: इत्र है।
1: कभी महसूस किया है आपने कि एक नाम में इतनी पावर होती है, जिस शख्स से आप मोहब्बत करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है, अगर उसका नाम फ्लैश होता हुआ दिख जाए फोन के नोटिफिकेशंस में, या तो वो मैसेज कर रहा है पर्सन या कॉल कर रहा है, या फिर आप उसकी कोई स्टोरी देख लो, या फिर आप किन्हीं दो लोगों को उसके बारे में बात करता हुआ सुन लो, दैट नेम अपीयर्स एंड यू एक्चुअली एंड अप स्माइलिंग। नहीं, जिक्र।
2: मिर्ची कैफे
1: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। होता है ना यार, किसी का जिक्र होते ही हमारी बांछें खिल जाती हैं, जिसको कहते हैं। सो यस, दीज लिटिल फीलिंग्स एंड इमोशंस, राइट? वेल, मेरे साथ आज मिर्ची कैफे पर हैं शाहिद माल्या। अच्छा, शाहिद माल्या हमें बताएंगे आज इस शो पर कि कौन से वो ऐसे चार गाने हैं
3: जी
1: जो शाहिद रेकमेंड करेंगे मेरे लिसनर्स को। वो आपके भी हो सकते हैं, वो किसी के भी हो सकते हैं। कोई ऐसे चार गाने जो आप लिसनर्स को रेकमेंड करेंगे कि अगर नहीं सुने हो किसी ने तो जरूर सुने। कोई ऐसे चार गाने
3: सुने होंगे बेशक उन्होंने, बट एक मेरा गाना है बिट्टू बॉस फिल्म से, उस गाने का नाम है मन जागे सारी रात। वो आप जरूर सुनिएगा, वो अंडररेटेड हार्ट ब्रेक वाला गाना। अगर आपका दिल टूटा है तो वो सुनने के बाद चकनाचूर हो जाएगा और ज्यादा टूट जाएगा।
1: अच्छा,
3: दूसरा गाना जो मेरा अंडररेटेड गाना मैं कहूंगा, जिसे एक फिल्म आई थी शेफ, सैफ अली खान उसमें थे, उसमें एक गाना है, रघु दीक्षित ने पहली बार म्यूजिक दिया था उसमें। और गाने का नाम है खोया खोया। अच्छा। खोया खोया रास्ता। और मेरे गाने के अलावा जो मुझे लगता है कि आपको सुनना चाहिए वो है एक शेखर साहब का गाया हुआ, शेखर आप जी यानी का, जहनसीब तुझे चाहूं बेतहाशा, I love विदा करो फ्रॉम रहमान साहब। अगर आपने सुना तो ठीक है, नहीं तो प्लीज जरूर सुनिएगा।
1: थैंक यू सो मच शाहिद माल्या जी, आज आप हमारे कैफे में पधारे, मिर्ची कैफे में आपने हमारे साथ चाय पी, इतने सारे गाने सुनाए एंड कॉन्सर्ट बना दिया इस शो को आज। लवली हैविंग यू शाहिद। अब सुनेंगे नेक्स्ट गाना शाहिद माल्या का रेकमेंडेड। शाहिद को यहाँ अलविदा कहते हुए, लेकिन मैं अभी वापस आ रही हूँ आपके पास। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: यार म्यूजिक के बारे में सबसे प्यारी चीज मुझे लगती है कि किसी भी लैंड से आ जाए वो आर्टिस्ट, किसी भी भाषा में गा दे, तब भी हमें कोई ना कोई कनेक्शन फील होता है आवाजों से, म्यूजिक से, बियॉन्ड बाउंड्रीज, बियॉन्ड लैंग्वेजेस. और सच में दिस सॉन्ग हार्डी संधु का गाया हुआ सोच फील्स लाइक कि कोई मेरे लिए गा रहा है ये.
1: मिर्ची कैफे
0: सुन रहे हैं आप, मिर्ची कैफे मेरे यानी पारुल के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. कौन सी ऐसी वो दो चीजें हैं विच कीप यू गोइंग? वो कोई इंसान भी हो सकता है, कोई चीज भी हो सकती है. प्लीज सोचना इस बारे में और प्लीज राइट टू मी. ओके, paruls.world पे मैं आपको मिलूंगी इंस्टाग्राम पे. और मैं आपको अपना स्टूडियो का भी नंबर बता देती हूँ, 7045983983. प्लीज डू राइट टू मी. तो प्लीज सोचो और मुझे बताओ कौन सी वो दो चीजें हैं या इंसान हैं जो आपको खुश रखते हैं. लाइफ की प्रॉब्लम्स, परेशानियां, भागदौड़ तो चलती रहती है, पर वो दो चीजें हैं जिनकी वजह से आप खुशी खुशी निकलते हो काम पे. खाना भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है. प्लीज यू टेल मी. ओके, और अगला गाना मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्रुति हासन की आवाज में. बहुत दिनों बाद सुनोगे आपके गाना, देखना. लिसन टू दिस सॉन्ग, आई विल बी राइट बैक. स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
1: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
2: आएंगे दीदी।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन।
5: It's hot.
6: यहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं छुप जाऊँ, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊँ, हूँ खुद से जुदा।

0: डियर जिंदगी से सुना आपने गाना भी सुनी थी चौहान की आवाज में ओनली ऑन मिर्ची कैफे. मैं हूँ आपके साथ पारुल.
1: मिर्ची कैफे
0: यार ये टाइम मुझे सच में अच्छा नहीं लगता जब मुझे आपको बाय बाय बोलना पड़ता है. इतने सारे गाने मैं आपके लिए लेकर आती हूँ. विवेक, चिन्मय, प्रशांत और अनुभूति, इन सबको मैं बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ कि आपने मुझे डीएम किया, अपने अपने गाने रिक्वेस्ट किए. प्लीज कीप टॉकिंग टू मी, कनेक्टिंग विद मी. मुझे प्लीज बताओ कि आपको ये शो पे और क्या चाहिए, आज का शो कैसा लगा, कौन सा गाना सुनना चाहते हो, या फिर रैंडमली अगर आपको लगे कि, या फिर कभी आपको यूं ही लगे कि कोई तो दिल में बेचैनी है जो आप किसी से कह नहीं पा रहे हो और आपको कहने का मन कर रहा है कि जस्ट गो टू हेल दिल. सिर्फ शेयर करके बहुत मन हल्का होता है, ट्रस्ट मी ऑन दिस. एंड इफ यू डोंट हैव एनीवन, यू हैव मी. डीएम करो मुझे, कनेक्ट करते हैं, ठीक है? parul.world ऑन इंस्टाग्राम. और लास्ट में आपके लिए एक हैप्पी नोट पे गाना छोड़ के जा रही हूँ, बिकॉज अगर आप किसी से भी जाके पूछोगे ना कोई आफत, परेशानी, मुसीबत चली रही है, दैट्स व्हाई वी आर अलाइव. पर हैप्पीनेस और सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अपने से चिपका के रखना. सुनते रहो मिर्ची, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

0: मिर्ची पर इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस.
1: हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर समीन समीद. आई एम साइकियाट्रिस्ट एट नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर. आई एम हियर टू टॉक अबाउट फ्यू थिंग्स दैट वी ऑफन इग्नोर व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ. दिस इज जस्ट अ रिमाइंडर फॉर अस टू नॉट फॉरगेट अबाउट टेकिंग केयर ऑफ आवर मेंटल हेल्थ. फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक अ पॉज. Life can get very busy and sometimes we forget to pause. Take a few minutes today to step away from your phone, breathe deeply and simply be present. You don't always have to keep going. Sometimes a small pause is exactly what your mind needs.
2: Take care of your mind. It matters.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी करता है आपका इस्तकबाल। और ये जो मोहब्बत और इंतजार का एहसास है ये हमेशा से इंसानी जज्बात का हिस्सा रहा है, चाहे वो मोहब्बत को बयां करता हुआ कोई नगमा हो या एक सादा खत जो दूरियों के बावजूद रिश्तों का ताल्लुक गहरा कर देता है। और खत लिखने की कला आजकल के वक्त में तो दोस्त देखो एक्सटिंक्ट होती जा रही है, मगर उस आर्ट के बारे में बशीर बद्र साहब का मेरा एक बड़ा पसंदीदा शेर है। कहते हैं कि खत ऐसा लिखा है कि नगीने से जड़े हैं, खत ऐसा लिखा है कि नगीने से जड़े हैं, वो हाथ की जिसने कोई जेवर नहीं देखा। आए हाय, इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में जो आर्ट के कद्रदान आज भी बचे हैं उनके चेहरे पे ये शेर मुस्कान ला देगा। बहरहाल सिर्फ मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.
2: Is cabana, pus cabana, sa cabana. Cabana. Burka, burka. La vieja la burka. Mirchi, burka.
3: हेलो,
4: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: बोल रहे
4: हैं। राज जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
3: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
4: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
3: लेकिन है किस लिए ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
4: नहीं
3: है?
4: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं, हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
3: तो
4: हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ।
3: पूरी
4: नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
3: बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास?
4: नहीं नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
3: ये कॉपी मुझे भी भेजना
4: राजी। एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
3: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेज।
4: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहे तो?
3: हाँ बिल्कुल बताइए।
4: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को। नहीं, ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
3: कुकड़ों को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: हेलो शॉप्स, आर प्रोडक्ट इज फिनोमिनल, वन ऑफ अ काइंड, बट स्टिल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मैंने बाबा जी से एडवाइस ली तो कहते हैं
6: ऑफिस के टॉयलेट में टॉयलेट पेपर व्हाइट नहीं येलो लगाओ, प्रॉफिट आएगा।
5: रिलेटिव से एडवाइस लो तो कहते हैं
7: काम को टाइम दो, 25 घंटे काम करो, डार्क सर्कल्स होंगे तो फ्यूचर ब्राइट होगा।
5: इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ प्रमोशन फंड के लिए, जिसके लिए आप 50% इक्विटी ले सकते हो।
8: भाई क्या कर रहा है तू, जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है, ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
9: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ और अब वक्त आ चला है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू।
1: कि आपको रूबरू कराए हमारे आज के शायर, अजी शायर क्या खुदाए सुखन से, मीर तकी मीर से, लफ्ज़ो मानी के जादूगर बेमिसाल शायर मीर तकी मीर को अभी 300 साल पूरे हुए 20 सितंबर को। और मीर साहब उर्दू गजल के वो प्रेत हैं कि जो उसकी जकड़ में आ जाता है जिंदगी भर वो उसके अधीन रहता है। मीर ने उन लोगों से भी प्रशंसा पाई जिनकी अपनी शायरी मीर से बहुत अलग थी। उनकी शायराना अजमत को इससे बढ़कर क्या सबूत होगा कि जमाने के मिजाजों में बदलाव के बावजूद उनकी शायरी की महानता का सिक्का हर दौर में चलता रहा। मीर का आजकल मेरा एक बड़ा पसंदीदा शेर चल रहा है, कहते हैं कि उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया। उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। कितनी दारदार बात, कितनी आसानी से कह जाती। दिल की बीमारी होती ऐसी है कि जान और सुकून लेके ही जाती है। खैर मुलायजा फरमाए, अगली गजल सिर्फ मिर्ची महफिल पर। आपका ताशी है आपके साथ इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही. मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून.
1: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं.
0: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
2: बार बार.
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
3: 89.6
4: 89.6 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और इंसान का मूड भी ना अगर रेगुलेट ना किया जाए तो एक बड़ी इम्पल्सिव चीज बन जाता है, पल में बदल जाए। तभी कहते हैं कि दिल के घोड़े को हमेशा लगाम लगा के रखनी चाहिए। कैसर शमीम साहब का एक बड़ा बेहतरीन शेर है, कहते हैं कि मौसम अजीब रहता है दिल के दयार का, दयार मतलब शहर, मौसम अजीब रहता है दिल के दयार का, आगे है लू के झोंके भी ठंडी हवा के बाद। है ना खूबसूरत शेर। पढ़ते हुए मुझे ये भी याद आता है कि गर्लफ्रेंड्स के मूड को भी अगर डिस्क्राइब करना हो तो इससे बेहतर शेर और कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको अपनी मोहतरमा पे कोई शेर ध्यान आता हो तो लिख भेजे मेरे इंस्टा NFB मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। अगली बार सुना दिया जाएगा और क्या। मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची पर इस वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस।
2: हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर समिन समीद। आई एम साइकियाट्रिस्ट एट नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर। आई एम हियर टू टॉक अबाउट टेकिंग केयर ऑफ आवर मेंटल हेल्थ। चेक इन टुडे, यू कैन चेक इन ऑन समवन यू केयर अबाउट। अ सिंपल हाउ आर यू रियली डूइंग कैन मीन अ लॉट। यू डोंट नीड टू हैव ऑल द आंसर्स। समटाइम्स लिसनिंग विदाउट जजमेंट एंड सिंपली बीइंग देयर That's absolutely enough. And finally, always seek help when in need.
0: Take care of your mind. It matters.
3: Cut, cut!
4: Who that?
3: Butt!
4: Butt? Are you butt?
3: Butt, butt, butt, butt, butt, butt, butt. The bike bahut awaaz karti hai.
4: Cut, cut? Who that?
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: और सच में आ, कुछ गाने आपके जहन को अकेला नहीं छोड़ते।
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: और मिर्ची महफिल पर अब वक्त आ चला है कि ऐसे ही एक गाना मैं आपके नजर करूं, आपका ताशी आपके नजर करे। बिल्कुल, और आज का जो गाना है वो है सुरेश वाडेकर साहब का। और सुरेश वाडेकर साहब का वन ऑफ दो सॉन्ग्स जो कि उनका नाम लेते ही मेरे जहन में कौंधता है। पेशे खिदमत है सिर्फ मिर्ची महफिल पर।

अब देखें, आज न जाने क्यों मेरे जहन में बॉलीवुड में जो हमारी गजलों ने बड़ा नाम किया वो चढ़ी हुई है, तो अगला ताशी अनप्लग्ड भी शायद आप कोई बॉलीवुड में बड़ी फेमस गजल ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी आपके साथ, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आप कताशी है आपके साथ, और यादों का एक अपना जादू होता है जो हमें कभी बचपन की कागज की कश्ती की याद दिलाता है, और कभी वो लम्हे जब आप अपने किसी अजीज की यादों में डूब जाते हैं। जब लोग कहते हैं कि ताशी भाई आप तो इतना पढ़ते हैं लिखते हैं, आदत कैसे बनी हुई है, तो मैं उन्हें जानिसार अख्तर साहब का ये शेर सुना देता हूँ बस, कि ये इल्म का सौदा ये रिसाले ये किताबें, ये इल्म का सौदा ये रिसाले ये किताबें, एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए है। यादों का ये सफर भी कितना अजीब है यार, जहां एक तरफ बचपन की यादें हैं और दूसरी तरफ वो हसीन लम्हे जो अपनों के बिना अधूरे लगते हैं। बहरहाल ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana.
3: Ya bana.
2: Murga, murga. Na vid bala murga.
3: Mirchi, murga.
4: हेलो
5: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
4: मोबाइल
5: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
4: क्या रिपोर्ट आ गई है?
5: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
4: मोबाइल चोरी हो गया?
5: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
4: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
5: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
4: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
5: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
4: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
5: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
4: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
5: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर बनाता हूँ।
4: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
5: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
4: हाँ जी सर।
5: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
4: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
6: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
4: कुकड़ों को।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
7: खट खट।
8: कौन है?
7: अज्जू।
8: अज्जू कौन?
7: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए।
8: खट खट, हु दैट?
0: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ और अब वक्त आ चला है
2: मिर्ची महफिल पे किस्सा कॉर्नर किस्सा कॉर्नर
1: कि आपको सुनाया जाए आज का किस्सा जो आ रहा है अकबर इलाहाबादी साहब की जानिब से। किस्से का नाम खालू के आलू। अकबर इलाहाबादी दिल्ली में ख्वाजा हसन निजामी के यहाँ मेहमान थे। सब लोग खाना खाने लगे तो आलू की तरकारी अकबर को बहुत पसंद आई। उन्होंने ख्वाजा साहब की दुख्तर हूर बानो से जो खाना खिला रही थी पूछा कि बड़े अच्छे आलू हैं, कहां से आए हैं? उसने जवाब दिया कि मेरे खालू बाजार से लाए हैं। इस पर अकबर ने बिना सोचे ये शेर पढ़ा, लाए हैं ढूंढ के बाजार से आलू अच्छे, लाए हैं ढूंढ के बाजार से आलू अच्छे, इसमें कुछ शक नहीं है हूर के खालू अच्छे। वाह जी वाह, वाह वाह। अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड एक करेंसी होती ना तो उसमें अकबर साहब करोड़पति होते। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची महफिल और अगली गजल पेशे खिदमत है आपके लिए। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स

0: Mirchi, It's Hot. अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही. मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून.
1: खट खट. अकबर.
2: अकबर हू?
1: अरे अकबर बता दिया है, बार बार नहीं ना बता पाएंगे.
2: खट खट. हू दैट?
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ। और स्कूल कॉलेज के प्यार में एक बड़ी दिक्कत ये पेश आती थी कि जिससे आपको अपने दिल की बात कहनी होती थी वो कभी खाली नहीं मिलता था, कभी अकेला नहीं मिलता था, कभी दोस्तों के साथ या फिर कभी टीचर में या फिर क्लास में व्यस्त। और बचपन में उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता था कि किसी के सामने जाके कुछ कहा जा सके। अहमद मुश्ताक साहब का एक शेर है कि तन्हाई में करनी तो है एक बात किसी से, तन्हाई में करनी तो है एक बात किसी से, लेकिन वो किसी वक्त अकेला नहीं होता। मजे मजे में अहमद साहब पते की बात कह गए। बहरहाल अगला नगमा वन ऑफ माय फेवरेट्स ओनली ऑन मिर्ची महफिल। आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची महफिल में आपका ताशी है आपके साथ और अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे लव्स आजकल
1: कि आपकी वोकैब में जोड़ा जाए एक और उर्दू का लफ्ज। हाँ जी, और आज का लफ्ज है इनायत। इनायत का मानी होता है फेवर करना या फिर एहसान या फिर उपकार। नजीर बनारसी साहब का बड़ा सरकास्टिक सा शेर है कि ये इनायतें गजब की ये बला की मेहरबानी, ये इनायतें गजब की ये बला की मेहरबानी, मेरी खैरियत भी पूछी तो किसी और की जबानी। है ना, अगर ये शेर और से आपको थोड़ा सा साफ दिखाऊं इनायत का मतलब, तो फरत एहसास साहब का शेर है कि तुम्हारे दिल पे अपना नाम लिखा हमने देखा है, तुम्हारे दिल पे अपना नाम लिखा हमने देखा है, हमारी चीज फिर हमको इनायत क्यों नहीं करते। तो जस्ट लाइक दैट आप वाकिफ हो गए एक और उर्दू के लफ्ज से, इनायत, जिसका मानी हुआ फेवर। अब इस लफ्ज का इस्तेमाल एक सेंटेंस में, बड़ा खूबसूरत सा सेंटेंस बनाइए, इस लफ्ज का इस्तेमाल करिए और हमें लिख भेजिए हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी आपके साथ। इट्स हॉट।

तो ना कहो हम खुद ही से खेले, तुम तो ना कहो

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल में आपका दाशी है आपके साथ। और कई लोगों को ये लगता है कि एक शेर सिर्फ दो लाइंस को राइम करा देने भर से बन जाता है, जो हमारी पूरी इंस्टाग्राम वाली जनरेशन है। आप इंस्टाग्राम अगर स्क्रॉल करेंगे कई बार तो आपको ऐसी ऐसी दो लाइनों को शेर बुला दिया जाता है और उसके बाद नीचे गालिब लिख दिया जाएगा। बाप रे, गालिब अपनी कब्र में लौट रहा होगा, भाई साहब की ये सब क्या कह दिया इन्होंने मेरे। हाँ, तो मैं आपको आज बताने आ गया हूं कि किन्हीं भी दो लाइनों को शेर कहने के लिए उन्हें बहुत सारे पैरामीटर्स पे गुजरना पड़ता है, उन पे खरा उतरना पड़ता है। पहले तो उन्हें बहर में होना पड़ता है। अब आप पूछेंगे बहर क्या होती है, तो बहर का मतलब होता है मीटर। मॉडर्न जमाने में अराउंड 32 बहरे हैं, 32 मीटर्स हैं बेसिकली जिनका इस्तेमाल होता है, मगर उनमें से भी 15-16 ऐसी बहर हैं, ऐसे मीटर्स हैं जिनका ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो अब आप जानते हैं कि अगर कोई इंसान बस दो लाइनों को जोड़ के कह रहा है तो शेर नहीं है दोस्त, वरना मोहम्मद अलवी साहब का शेर तो जिंदाबाद है ही कि शेर तो सब कहते हैं, क्या है चुप रहने में और मजा है। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपके ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Rabana. Burka, burka. Navid bala burka. Mirchi burka.
3: Hello.
4: Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको. आपका अकाउंट नंबर 337103 राइट?
3: हाँ.
4: One second, sir. सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000.
3: हाँ.
4: One second, sir. आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
3: नहीं तो.
4: आपने नहीं किया है?
3: नहीं.
4: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
3: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
4: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए. कम से कम मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है. आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले, किसने निकाला? किस पे शक है आपको?
3: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना कुछ को चेक दिया है, ना मैंने एटीएम यूज किया है.
4: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
3: मैंने 2 पैसे भी निकाले.
4: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
3: मैंने कोई पैसा नहीं निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया. एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल. ओके
4: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं लेके मत जाओ, हम दे देते हैं आपको. अब मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
3: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पर मेरा नाम लिखा है.
4: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल दिए हैं. मुझे नहीं पता आप
3: ठीक बोल रहे ना, वहीं आके बजाऊंगा.
4: आप मुझ पे क्या बताएं? आप बदतमीजी से बात मत करिए. सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए. बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी. स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं सर. ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे. 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है.
3: क्या
4: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
3: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
5: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ. बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है. 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं आपके अकाउंट में. 1,42,000 रुपए हैं. और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था.
4: लेकिन सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है. नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
6: बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना.
7: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
8: कैसे रुक सकता है?
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
9: 89.6
0: FM मिर्ची वन. इट्स हॉट.

0: मिर्ची इट्स हॉट
1: और मिर्ची महफिल में अब मौका है दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे डायरी से
1: कि आपका दाशी पलटे अपनी डायरी के सफे और सुनाए आपको अपनी थेरेपिस्ट से बातचीत के दौरान मुझे फहमीदा रियाज साहिबा का एक गजल के कुछ शेर याद आए क्योंकि कई बार आपके मेंटल इश्यूज जो होते हैं ना वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। एक तरफ तो वो आपको दिक्कत दे रहे होते हैं वही कहीं ना कहीं आपके आर्ट में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। फहमीदा साहिबा लिखती हैं कि जो मुझ में छुपा मेरा गला घोट रहा है या वो कोई इबलिस है या मेरा खुदा है जब सर में नहीं इश्क तो चेहरे पे चमक है ये नखल खिजा आई तो शादाब हुआ है। ऐसी गजलों नगमों के लिए स्टे ट्यून टू मिर्ची महफिल। और सही बात है यार, मतलब आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, कई बार आपकी आर्ट को बहुत ज्यादा सस्टेन करती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें बढ़ावा दिया जाए, है ना। बने रहें अपने थाशी के साथ, इट्स हॉट।

Mirci, It's Hot. अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, आपका ताशी है आपके साथ। और लोगों के बीच होने से अगर तन्हाई मिटती तो क्या ही बात होती। गुलजार साहब की लिखी वो गजल याद आती है, कहते हैं कि जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ और सफर तन्हा। अपने साये से चौंक जाते हैं, उम्र गुजरी है इस कदर तन्हा। दिन गुजरता नहीं है लोगों में, रात होती नहीं बसर तन्हा। जिंदगी यूं हुई बसर तन्हा, काफिला साथ और सफर तन्हा। और तन्हाई का कीड़ा तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा लोगों के बीच में ही काटता है, जब आपको अपने ही आसपास सबसे अनरिलेटेबल, सबसे डिस्कनेक्टेड सा फील होने लगे। खैर, मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: और बस यूं ही वक्त आ चला है मिर जाने का.
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड.
1: मिर्ची महफिल पर आपका ताशी था आपके साथ. हाँ जी, अच्छा सफर ऐसे ही कब बीत जाता है पता नहीं चलता. लेकिन आज ना ताशी अनप्लग्ड में मैं आपको फिर से एक बॉलीवुड से जुड़ी हुई गजल नजर करूंगा. और ये जो गजल है ये हमारे गुलजार साहब ने लिखी और बड़ी फेमस हुई. मतलब हर बच्चे बच्चे की जबान पे गजल है, जगजीत जी की आवाज में गजल है. ज्यादा वक्त जाया करे बगैर, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है. पेशे खिदमत है आपके लिए.

चलिए अब मुलाकात होगी हफ्ते के उस पार, लेकिन छोड़ के भी जाऊंगा आपको जगजीत जी और लता जी की ही आवाज की एक गजल के साथ। सजदा करके एक बड़ा एपिक एल्बम आया था इन लोग का, एंड दिस वन इज गम का खजाना, तेरा भी है मेरा भी। आए हाय, मिर्ची महफिल सुन रहे थे आप, और मैं मिल जाऊंगा आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ऐ मेरी हमरंग्स मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

के दिल धड़के उमर की उठा कड़कती कमा कातिल अदा जालिम हया